0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: RM2, Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: 6 बजे है. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति शुभ नमस्कार आपको.
3: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार. राष्ट्रीय सभा में कल बजट बहसों के दौरान एक बार फिर स्टेट एज पेंशन का मुद्दा केंद्र में रहा. जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया ने यूनिवर्सल पेंशन समाप्त करने के विचार का विरोध किया. हालांकि उन्होंने मॉरिशनों की खरीद शक्ति बेहतर करने के लिए व्यवसाय और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे कदमों की सराहना की. बजट बहसों में कल भाग लेते हुए विदेश मंत्री रितेश रामफल ने एमएसएम की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई एक नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है. उनके अनुसार पिछली सरकार ने कई कदम मात्र सत्ता पर बने रहने के लिए उठाए थे. उन्होंने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम में देश और जनता के हित में गैर लोकप्रिय लेकिन आवश्यक फैसले लेने का साहस है. मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर है लेकिन 2026 के लिए इसमें हल्की कमी आने का अनुमान है. बैंक ऑफ मॉरिशस ने अपनी हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में उच्च सार्वजनिक ऋण, प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए की धीमी वृद्धि और नियमित इन्फ्लेशन का उल्लेख किया है. इस साल के लिए आर्थिक वृद्धि 3% पर रहने का अनुमान है जो 2025 में 3.2% पर थी. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में वेनेजुएला में एक के बाद एक भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर पहले की तीव्रता 7.2 और दूसरे की 7.5 अंकों की मापी गई. कई इमारतें ढह गई हैं. लोगों को तुरंत बाहर निकलने के आदेश दिए गए. अधिकारियों के अनुसार मरने वालों की संख्या 10,000 पार करने का खतरा बना हुआ है. वेनेजुएला में राष्ट्रीय छुट्टी होने के कारण ज्यादातर लोग घर पर थे जब ये भूकंप

0: पेश आए। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व दक्षिण पूर्व से आ रही बादलों का असर रह रहकर हमारे इलाके पर पड़ेगा अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। रात के दौरान भी कुछ पूर्वी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश तेज़ हो सकती है और बादलों के गरजने की भी संभावनाएँ हैं। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा और विजिबिलिटी कम हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 3.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:45 पर सूर्योदय, शाम को 5:40 पर सूर्यास्त होगा।
1: RM3 Radio.

कि वो हमें नायतों के सुनने का अजर सवाब बता करे और हमें सही तरीके से कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करे। आमीन। पेश खिदमत है एक हमद, आइए समात करते हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार की वो उन्हीं में से है। मुहर्रम में ऐसी रसूमात, नूहे, खुद को नुकसान पहुंचाना या गैर इस्लामी तरीके अख्तियार करना जायज़ नहीं। मुसलमान को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक एतदाल और सब्र का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। मुहर्रम का असल पैगाम सब्र और तक्वा है। इस महीने को सिर्फ रस्म और रिवाज तक महदूद न करें, अपने आमाल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाएं, दूसरों को तकलीफ देने से बचें, दिलों में इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा करें, हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, नौजवानों को दीन की सही तालीम दें। मोहतरम सामीन, आज की उर्दू नशियात सबाल खैर अख्तिताम पजीर हुआ चाहती है। दिल से दुआ है हमारी कि कल का दिन आप सभी के लिए बखैर गुजरे। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा नेक आमाल करने की तौफीक व ताकत अता करे और उन्हें अपने दरबार में अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके शर्फ़ कबूलियत अता करे। आमीन सुम आमीन। इसी नेक तमन्ना के साथ समीर आपसे रुख्सत की इजाज़त तलब करता है। अल्लाह ने चाहा तो हमारी मुलाकात फिर होगी। अभी के लिए हमें इजाज़त, अपनी दुआओं में मत भूलना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रतिरोजु मन कार्यक्रम कोसम मीरु अदे उत्साहम अदे कुतूहलम कोसम वेचि उंटारु. प्रेम भरितमैन पाटलु

शक्ति में शक्ति। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को आज का दिन शुभ हो। भक्ति में बड़ी शक्ति है और भक्ति की शक्ति अनेक तरह से हम अपने जीवन में उतारते हैं। श्रोताओं, आज निर्जला एकादशी है। ऐसे तो एकादशी 24 होती हैं, हर महीने दो एकादशी आती हैं, दो अमावस्या आती हैं, दो पूर्णिमा आती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। यह दिन अपने आप को साधने का, संवारने का, मन को काबू करने का कहलाता है। तो चलिए इस भजन को सुनते हैं।

निर्जला एकादशी से तात्पर्य है वह एकादशी जब आप जल रहित व्रत रखते हैं। तो जल रहित व्रत रखने का मतलब ये एहसास होना कि जिनको पानी भी नहीं मिल पा रहा वे कैसे जीते हैं। श्रोताओं, मन में संवेदना ये व्रत सिखाते हैं। एक दिन पहले से ये व्रत शुरू हो जाता है और अगले दिन सांझ को जब सूर्य ढलता है तब यह व्रत समाप्त होता है। तो श्रोताओं, जहाँ एक ओर साधक अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र करता है, वहीं उसका मन उन लोगों के लिए संवेदना से भरता है जिनके पास भोजन नहीं, जिनके पास शुद्ध जल नहीं, कैसे वो लोग जीवन जीते हैं। तो भक्ति की शक्ति जो है वो इसी साधना से मिलती है और हम एक संवेदनशील मनुष्य बन पाते हैं। तो आइए इस भजन को सुनते हैं।

श्रोताओं, निर्जला एकादशी में जहाँ हम पूरा दिन निर्जल रहते हैं, व्रत रखते हैं, वहीं पर इस दिन हम जल के रूप में बहुत कुछ समाज को बांटते हैं। कुछ लोग पानी की बोतलें बांटते हैं, कुछ लोग दूध और दही की लस्सी बांटते हैं, कुछ लोग शरबत बांटते हैं। भारत में इस समय बहुत गर्मी होती है, तो निर्जला एकादशी का महत्व वहाँ पर और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना और जून का महीना सबसे गर्म होता है। गर्म हवाएं, गर्म लू चलती है। ऐसे में व्यापारी लोग, काम करने वाले लोग अपने धन में से कुछ धन दान के रूप में पूरा दिन पानी, लस्सी, शरबत, दूध ये सब कुछ बांटते हैं, ताकि रिक्शे वाले जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो एसी वाले कमरों में नहीं बैठते हैं, उनको पूरा दिन आज के दिन पीने के लिए खूब उपलब्ध हो। आप यदि चांदनी चौक की तरफ जाएं, तो आप हैरान होंगे देख के कि हर 10-15 कदम पर लोग जो हैं वे जल के रूप में कुछ भी बांट रहे होते हैं और लाइन लगाकर लोग उसे पीते हैं। तो श्रोताओं, जल के महत्व को समझना और शुद्ध चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें उन लोगों तक पहुँचाना जिनके पास ना तो एसी है, जिनके पास ना तो उतनी जल की उपलब्धता है कि वे बोतल जल की बहुत खरीद सकें, तो वास्तव में निर्जला एकादशी हमें इतना संवेदनशील बनाती है कि हम जल जैसी बेसिक ज़रूरत को भी हम पूरा कर सकें। आइए सुनते हैं इस भजन को।

श्रोताओं, निर्जला एकादशी का संबंध विष्णु भगवान से है। आप सभी को पता है विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं और उनके सिर पर, मस्तक पर शेषनाग की छाया है और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं। अर्थात जो विष्णु रूप है पालन करता, जो पूरी सृष्टि का पोषण करता है, उसके चरणों में लक्ष्मी भी जाकर बैठती हैं। इसीलिए निर्जला एकादशी बांटने का त्यौहार है, पोषण का त्यौहार है, दान का त्यौहार है। तो हम अपनी राशि में से जब कुछ दान करते हैं तो माँ लक्ष्मी हम पर कृपा करती हैं। तो विष्णु से निर्जला एकादशी का संबंध है, अर्थात पालन पोषण, अर्थात किसी की ज़रूरतों को पूरा करना। तो सुनते हैं इस भजन को।

और अंत में श्रोताओं, हमने यदि निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है। शारीरिक रूप से तो हम स्वस्थ होंगे ही, लेकिन मन भी हमारा मजबूत और पवित्र होगा। पर इसके साथ साथ यदि हम ज़रूरतमंद लोगों को खोज कर सही व्यक्ति को सही चीज़ दे सकें खाने पीने की, या उसके लिए कुछ उपाय कर सकें, तो वास्तव में निर्जला एकादशी सार्थक होती है। तो श्रोताओं, हम अपना जो हम पर प्रभु ने कृपा की है उसमें से कुछ अंश ज़रूरतमंद को दे सकें, यही हमें व्रत पूजा सिखाते हैं। तो श्रोताओं, इसी के साथ आप सभी को निर्जला एकादशी शुभ हो और यह दिन आपके लिए मंगलमय हो। अलका धनपत और शिव को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ दिन।

भजन में भाव हैं, जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था बढ़ती है विभिन्न अवस्थाओं में वो संसार के झंझटों में फंस जाता है। केवल एक काम करना वो भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना, हरि का सुमिरन करना। तो किस अवस्था में कौन कौन से झंझट हैं जिनमें मनुष्य फंस जाता है,

0: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अदिति आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। राज्यसभा में आज विपक्ष नेता जूली रूंगा का पीएनक्यू बजट 2026-2027 में घोषित पेंशन सुधार पर आधारित है। उन्होंने खास तौर पर सुधार का प्रस्ताव देने के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी के गठन, उसके सदस्यों को दिए जाने वाले अलाउंस, आय आधारित मानदंड लागू करने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट और उन प्रस्तावों की समीक्षा करने वाली स्टीयरिंग कमेटी के काम में के बारे में जानकारियां मांगी हैं। नेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन की तरफ से पेंशन सुधार योजना और मींस टेस्टिंग की धारणा की कड़ी आलोचना की जा रही है। कल एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ के अध्यक्ष नरेंद्र

0: नाथ गोपी ने इस बात की निंदा की कि समस्त जनता को प्रभावित करने वाले इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने पर्याप्त स्पष्टता नहीं दी है। उन्होंने कहा कि बजट 2026-2027 एक स्पष्ट रोड मैप की तरह होना चाहिए जो ये दर्शा सके कि सरकार ने जनता की अपेक्षाओं और मांगों को ध्यान में रखा है या नहीं। नरेंद्र नाथ गोपी के साथ ने साथ ही बजटीय फैसलों, खासकर संचालन कमेटी से संबंधित फैसलों के बारे में गैर निर्वाचित लोगों की भागीदारी पर भी सवाल उठाए हैं। व्यापार को बढ़ावा देना और स्थानीय महिला ठेकेदारों के कौशल का प्रदर्शन करना, ये नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल द्वारा कल आयोजित बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग एंड नेटवर्किंग इवेंट का उद्देश्य रहा। पोर्ट लुइस में आयोजित इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिला ठेकेदार एकत्रित हुई। उन्हें अपनी पैदावारें और सेवाएं प्रस्तुत करने और साथ ही अपने पेशेवर नेटवर्क का विस्तार करने का मौका मिला। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, वेनेजुएला में के बाद भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर पहले की तीव्रता 7.2 और दूसरे की 7.5 अंकों की मापी गई। कई इमारतें ढह गई, कम से कम 32 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 700 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त है। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। विक्टोरिया लेन रोशनोमी 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड श्री संजीव ओरिसिंगाला अपादू जो संजीव नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी माँ श्रीमती राधिका ओरिसिंगाला अपादू के मकान विक्टोरिया लेन रोशनो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो रात 11 AM। चतरगुन लेन लेस्कालिये में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड श्रीमती संताबाई कुशनिया गणेश, पैदाशी नाम कुशनिया जो सांता नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे इनके बेटे श्री मोहन गणेश के मकान चतरगुन लेन लेस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासें कारोंग लेस्कालिये की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो रात 11 AM। तमिल टेम्पल रोड लागे मौसा पिया में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सरादम्बल मुचिया पैदाइशी नाम मुचिय जो देवी नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके बेटे श्री सदाशिवन मुचिया शिवन के मकान तमिल टेम्पल रोड लागे मौसापिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुन सौसापिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड श्री सुलेश गोकुलक जो सुलेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले SSRN अस्पताल में पूर्वाटेंडेंट थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी पत्नी श्रीमती माला गोकुलक के मकान ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इजी डोज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। समय सूचित नहीं किया गया है। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: RM3 Radio.

0: कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। भाई यही जानने के लिए आपके लिए हम लेकर आए हैं हमारा आज का प्रोग्राम, जहां पर कुछ आपके दिल की बातें, कुछ हमारे दिल की बातें हो जाए। क्या कहते हो आप?
1: सुहाना सफर।
0: स्वागत है आप सबों का हमारे कार्यक्रम में, जो कि है सुहाना सफर। वैसे तो सफर सुहाना तभी बनता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ सफर तभी सुहाना बनता है जब हम सफर साथ में हों, और हम सफर जो है उनको खुश करने के लिए, चलिए उनकी स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम यहाँ पर ले आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे खूबसूरत गाने जिसे सुनकर आपका भी दिल कहेगा कि हाँ भाई इसी चीज़ की कमी थी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला कार्यक्रम है ज़रूर आपके दिल तक ज़रूर पहुँचने वाला है। तो आपका स्वागत करती हूँ मैं वेदिता। हमारा जो प्रोग्राम है इसमें बहुत सारे लोग हैं जो हमें कर चुके हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपना नाम यहाँ पर हमें बताते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपके साथ हूँ मैं। और यहाँ पर कृष्ण कुमार का हम स्वागत करते हैं, वी हैव विमला, साथ में शैलेंद्र, प्रणाम। और यहाँ पर हमारे साथ आयशा जुड़ी हुई हैं, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल ठीक। तो चलिए देर न करते हुए अभी जो प्रोग्राम का हमारा अगला गाना है आपके लिए ले आते हैं, करवते बदलते रहे साथ रारी हम, आपकी कसम, हाँ सारी रात हम, या प्लीज। होता है कभी कभी, अभी सर्दी का मौसम है ना। संजू जी कैसे हो आप, स्वागत करते हैं आपका प्रोग्राम में।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए सुहाना सफर में जो नेक्स्ट हमारा गाना होने वाला है ये हम लेकर आए हैं आपके लिए आशा जी की आवाज़ में और अपनी आवाज़ के साथ मिला रहे हैं आवाज़ शैलेंद्र सिंह जी। हाँ, यहाँ पर गाना जो होगा हम रजनी मुहाबीर इंदिरा की तरफ से उनके दोस्त शाम के लिए विमला अविशान साथ में अरविंद बिसोनी कहते हैं दागोचिया के उनके जितने भी बिसोनी फैमिली है उनके लिए एंड अ वेरी बिग हेलो टू निक्की फिया माधुरी लक्ष्मी मिस्टर नूरुद्दीन फ्रांसिस साथ दे रहे हैं कल्याणी इंदिरा लौटन विमी परमिंदर निधीश ममता दानी जगरू फ्रॉम गुडलैंड्स और यहाँ पर परी आ गई हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच जिमान, कैसे हो आप? आपका भी प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं। जी हाँ, आपने बहुत दिन हुए मैसेज नहीं किया लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो आप आ गए हो। चलो भाई, यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए और गाना होगा फॉर माई डैड जो कि मॉरिशस में है, लव यू लोस। हाई चावल, कैसे हो? चलो इसी के साथ कहते हैं मिथुन जी का कोई गाना हो तो हाँ है मेरे पास, चलाऊंगी थोड़ी देर में। दीप्ति गुंदावरी आपका स्वागत है, कैसी हो मेरी बहन? सब ठीक, सब बढ़िया, ओके। चलो तो यहाँ पर गाना जो होगा आपके लिए, साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी और ऐसा करते हैं कि जो हमारा अगला गाना होगा वीर सिंह आपके लिए ही हम डेडिकेट करते हूँ और साथ में ये गाना जो है राधा के लिए। राधे राधे आपको, कैसी हो राधा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। अगर आप तैयार हैं तो गाना सुने, बहुत ही प्यारा सा गाना है, लुट गए हम तो राहों में। वैसे ये सफ़र सुहाना है और सुहाना सफ़र जो है इसको यादगार बनाने के लिए आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। और आपको पता है कि आप मुझे टिकटॉक पर लाइव फॉलो कर सकते हैं, अपने पैगाम यहाँ पर भी भेज सकते हैं।

0: सुहाना सफर।
1: इस समय दिन के 12:24 हुए हैं और आज है गुरुवार 25 जून। धीरे धीरे करके जून महीना खत्म हो रहा है और ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। चलिए आप लोग साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिहा की तरफ से नेक्स्ट गाना, उनके दोस्त जो इस समय काम कर रहे हैं स्वस्ति चाची अननी, साथ में है विकास और गाना होगा प्रिया तलजा के लिए, हाय कैसे हो आप। चलो नेक्स्ट गाना आपके लिए भी डेडिकेट करते हैं, गाना होगा किसके लिए। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं एंड यहाँ पर हमारे साथ हैं अंजलि चिथियार, स्टीफन हेलो, अक्रम, बबीता बुलाकी, अफीज़ा एंड साइलेश, मनोज हैं उलैन से, कहते हैं बहुत गर्मी है और हमारे यहाँ रात में बड़ी सर्दी है। और यहाँ पर हमारे साथ है रॉबिन हुड पांडे, कहते हैं कि हाँ भाई हम दबंग के पांडे नहीं हैं लेकिन थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम के ज़रूर रॉबिन हुड पांडे हैं। तो यहाँ पर गाना नजीमा गोवर्धन, जगदीश, करुणा, पुनीत, सबीना, उत्तम, कविता, मोहन, रेखा, अंबिका, प्रेमिला और सबीना के लिए निशी सिबोरत हमारे साथ हैं, गाना जाएगा आपके नाम। बिहारी जी हमारे साथ हैं, वी हैव रेहा जिन्होंने गाने की फरमाइश की, मालिनी, ऋतिक, यलेश, इन सब का हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। साकुन, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट गाना कहते हैं कि मेरी बेटी सोनाली, श्रीना और शालिनी के लिए अगर हो सके तो प्लीज़ डेडिकेट कीजिएगा।
2: You're listening RM Free Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: वादिया मेरा दामन। ये गाना तो बहुत सारे लोगों का फेवरेट है भाई। जगदीश जी कहते हैं कि आई जस्ट लव दिस सॉन्ग, और वहीं पे अनिल जी कहते हैं कि ये तो मेरा फेवरेट गाना है। वैसे मेरा भी फेवरेट गाना ही है, इसीलिए तो चला रहे हैं। चलिए भाई, यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा पर हर्जबन प्रकाश, और यही गाना हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए। हमारे साथ हैं कल्याणी हरी, वे हैव मायावती, संजना पीरू एंड भूमि संध्या।
2: RL3 रेडियो रेडियो रेडियो
1: कतुना किरण का भी हम स्वागत करते हैं। आपका गाना समझ में नहीं आया किरण जी, लेकिन थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गाना हम आपके नाम डेडिकेट कर रहे हैं। जितने भी लोग इस समय ड्राइव कर रहे हैं, आई एम श्योर कि ये गाना सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ड्राइव करते हुए इस गाने को सुनने का मजा ही कुछ और है। तेज सनातन जी का हम स्वागत करते हैं, दादी माँ के लिए गाना। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। अब मंजिल के लिए निकल गए हैं, जाना कहाँ है, बस सफर खूबसूरत और क्या चाहिए।

0: अजी जाना कहाँ है किसको फिकर है हमें तो बस अपना सफर सुहाना बनाना है
1: सुहाना सफर सुहाना सफर
0: जी हाँ सफर सुहाना तभी बनता है ना जब हम सफर ऐसे हो जो खुश हो आपके गीतों के साथ खुश हो और आपकी बातों के साथ खुश हो चलिए कहते हैं कि किसी से बात ऐसे करो कि वो सुनना चाहते हैं किसी से बात ऐसे करो कि आपकी बात को वो सुनना चाहते हैं और किसी की बातों को ऐसे सुनो जैसे वो आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दिल की बातें नहीं करते तो सुनना भी एक कला होता है जैसे बोलना एक कला होता है ना चलिए भाई हम मैं ही बोलूँगी या आप भी कुछ अपने मैसेज भेजोगे जल्दी करो हमारा टिकटॉक लाइव है वहाँ पर भी भेज सकते हैं हमारा व्हाट्सअप भी है 5250 6200 और अभी दीप्ति जी आपको ये गाना इतना पसंद आया क्या बात है चलो हेलो जी तरुण राम कैसे हो अभी भी दुबई में घूम रहे हो तो ठीक है घूमते रहो और हमारे गाने सुनते रहो करिश्मा जहांगी आपका स्वागत है हाय जैद कैसे हो नेक्स्ट गाना जो होगा आपके लिए डेडिकेट करते हैं ठीक है और इसी के साथ तरुण जो है तरुण दौलत हमारे साथ हैं गाना आपके लिए होगा और साथ में ये गाना होगा आपके लिए रफा फ्रॉम ट्रियोले हाय हाउ आर यू कैसे हो आप चलो यही गाना डेडिकेट करते हैं एंड गाना होगा उन दोस्तों के लिए जिन्होंने नाम नहीं लिखा एंड रोशन जी नमस्कार कैसे हो हाय मोहिनी दीनू कैसे हो कविता नू स्वागत है आपका कल अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया ना रूबा गंगा आपका भी स्वागत करते हुए चलिए अब नेक्स्ट गाना जो होगा ये मेरा फेवरेट गाना है आपके लिए बड़े प्यार से गाना है तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा

0: RM3 Radio. Radio.
1: आइए अब चोरी चोरी फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना लता जी के साथ आवाज मिला रही है मन्ना डे। ये गाना हम रचना विमला और उनके हस्बैंड और साथ में तिशा के नाम डेडिकेट करते हैं।

0: खाना सफर खाना सफर
1: जो दिन के उजालों में ना मिला दिल ढूंढे ऐसे सपने को। वैसे आपने गाने को सुना होगा, ये जो पुराने गाने होते हैं ना, इसमें सिर्फ लिरिक्स नहीं होते, इसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारा दर्द भी होता है, बहुत सारा प्यार भी होता है, बहुत सारा इंतज़ार भी होता है और उम्मीद भी होती है। आपने गाने सुने होंगे, हर एक गाना एक मास्टरपीस है अपने आप में, है ना। चलिए नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करते हैं आशा फ़कीर के लिए और पीछे काफ़िर जो हमारे साथ हैं लबना, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर कहते हैं कि नेक्स्ट गाना जो है वो बेटी के लिए, वो हॉस्पिटल में उनको मिस करिए, ये है नेहा की तरफ से। एंड यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए, रसो हेरिना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रचना जी कहती हैं कि कौशिक, तीर्थ, सतीश, सेजल, माधुरी के लिए, आपकी मम्मी के लिए। ओके, ज़रूर। और यहाँ पर गाना होगा स्नेहा लोबिन ऑफ कहाँ से, आरती के लिए गाना होगा, बेटे ममता और साथ में अर्जुन, साधना, मुकेश अवलाल माटी, थैंक यू सो मच। और चलिए यहाँ पर साहिल कहते हैं कि क्या बात है, आज तो हर गाने में चांद ही चांद है, लगता है चांद खिला है, अब क्या करें, खिला है तो खिला है। वैसे आप भी तो हमारे इस प्रोग्राम में चांद की तरह खिलकर आते हैं, है ना।
2: RM3 रेडियो रेडियो

0: भाई चोरी चोरी आए हैं लेकिन ये चोरी चोरी नहीं है, फोन करके आए हैं।
1: सुहाना सफर
0: स्वागत है आपका सुहाना सफर प्रोग्राम में। यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा मारुती सुकन के लिए, रागिनी जी, नंद अनोरकी, रेशमा, शबनम रॉय या राधे राधे आपको, देवीना बंधु, शारदा लखनोत और साथ में कवि किशन, मायरा, ज्योति चमन, करुणा जी, जय श्री कृष्णा। नेहा कहती है उनकी बेटी बीमार है तो हम सब मिलकर उनकी बेटी के लिए प्रे करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मनोज प्रत्या जी आपका हम स्वागत करते हैं, कॉलर हैं, चलिए उनसे मिल लेते हैं, बात करते हैं, देखते हैं हम कौन है हमारे साथ। हेलो
2: हेलो बेबीता जी, प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी, कौन है जी? मनोज जी,
2: हाउ आर यू?
0: आई एम गुड। वैसे आपने हमेशा आप इंग्लिश में बात करते हो ना, तो मुझे पता चल जाता है कि आप वो आज थोड़ा अलग मूड में हो, क्या बात है? तबीयत ठीक है आपकी
2: बेबीता जी?
0: हाँ जी,
2: एवरी डे माई मूड इज ओके।
0: या
2: एंड यूर मूड इज ओके एवरी डे?
0: या माई मूड इज ओके, देन योर मूड इज ओके।
2: I am happy because I am enjoy your show.
0: Thank you so much. अभी देखो अभी 12:55 हो गया है, लास्ट गाने के साथ समाचार की ओर बढ़ना है, जल्दी जल्दी बात करते हैं। आप बताइए मुझे कि आप कौन सा गाना सुनेंगे, मैं जल्दी से नोट कर लेती हूँ।
2: हाँ, पहले आप बताइए तबियत सब ठीक, परिवार
0: सब बढ़िया? सब बढ़िया, सब बढ़िया। गाना कौन सा होगा बता दीजिए।
2: गाना सुनना है मुकेश साहब के
0: जी,
2: नहीं लता जी को, सावन का महीना, पवन करे शोर शोर शोर।
0: ओके,
2: मूवी का नाम है मिलन, तो नाम जोड़ देना गीता सोहन
0: जी,
2: और नीलेश उसका बेटा है, बहू है उसका शालिनी, और सोहन परिवार तेबुसे से, और जितने लोग सुन रहे हैं, जितने गरीब लोग हैं, जितने धनवान लोग हैं, सबके लिए।
0: ये कैसा डेडिकेशन है भाई, ये कैसा डेडिकेशन है। अच्छा, तो
2: सब भगवान के लिए और आपके लिए भूला मत।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बाय बाय। तो चलिए श्रोताओं, इसी के साथ अभी जो अगला गाना आएगा उसके साथ हमारा जो प्रोग्राम है इसको हम समाचारों के लिए रोकेंगे, फिर हमारी आपकी मुलाकात जो है वो होगी 1 की समाचारों के बाद। फिलहाल चलते चलते जितने भी हमारे श्रोता हैं उनको एक बार फिर कहेंगे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट गाना जो होगा वो हम डेडिकेट करते हैं आप लोगों के लिए, वी हैव अश्रय श्याम जो सुखी नाम से हमें सुन रहे हैं, एंड वी हैव अमर, हाय अमर, करुणा, सबके लिए बहुत सारा प्यार। चलिए गाना पेश है आपके लिए। बाबा राकेश रामा भी हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रोहित, वेलकम कार्यक्रम में, स्वागत है, आप भी हैं फ्रॉम सुवी।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: दिन के एक बजा है। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर है, लेकिन 2026 के लिए इसमें हल्की कमी आने का अनुमान है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने अपने हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में उच्च सार्वजनिक ऋण प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपये की अधीमी वृद्धि और नियमित इन्फ्लेशन का उल्लेख किया है। इस साल के लिए आर्थिक वृद्धि 3% पर रहने का अनुमान है, जो 2025 में 3.2% पर थी। हर साल 25 जून को विटिलिगो से ग्रस्त लोगों के खिलाफ भेदभाव की रोकथाम के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस समस्या के तहत प्रतिरोधन कमियों के चलते त्वचा का डिपिगमेंटेशन होता है और इसका प्रभाव शारीरिक से ज़्यादा मानसिक होता है, क्योंकि कई बार इससे पीड़ित लोगों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर विटिलिगो मॉरिशस फाउंडेशन जैसे ऐसे लोगों के समर्थन के लिए कार्यरत हैं। मुख्य रूप से उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। सनातन धर्म में गायत्री जयंती का पर्व अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गायत्री के प्राकट्य दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि गायत्री मां की आराधना से जीवन में ज्ञान विवेक

0: शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। विदेश में वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक के बाद एक आए भूकंप के तेज झटकों के कारण भारी तबाही मच गई है। कम से कम 32 लोग मारे गए और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मलबों तले दबे लोगों की तलाश जारी है। कई इमारतें ढह गई हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 की मापी गई। वहाँ आपात स्थिति की घोषणा की गई है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। शातोगुनलेन लेस्कालिये में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सांता बाई कुशन्या गणेश पैदाशी नाम कुशन्या और जो सांता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे मोहन गणेश के मकान चातोगुनलेन लेस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासेंका होंग लेस्कालिये की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 8:11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: ना सफर, हाँ ना सफर,
1: क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। चलिए भाई, वादे वादे भूल जाते हैं और यहाँ पर हम अपने कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। हमारे साथ कितने सारे दोस्त जुड़े हैं और उन सबको हमारे गाने पसंद आ रहे हैं जानकर बहुत अच्छा लगा। और अभी के लिए जो नेक्स्ट गाना होगा वो डेडिकेट करेंगे हम अपने इन तमाम दोस्तों के नाम। वेलकम, सुहाना सफ़र प्रोग्राम है आपके लिए रेडियो मनोरंजन पर। हमारे साथ हैं कमल वासुदेवा जो कैनेडा से साथ दे रहे हैं, शमिला चुनीलाल, वे हैव कुलविंदर कौर, नील, एश, विदुला, निज़ाम अली फ्रॉम साउथ अमेरिका, वे हैव संगीता सुखारी एंड शिरीन रामजून जो इस समय हमारे साथ हैं। हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड यहाँ पर रीना, नमस्ते आपको। नेक्स्ट गाना आपकी बेटी रूही और आपके हस्बैंड अविनाश के लिए। एंड ये गाना सुन के तो शिरीन कहती है व्हाट अ सॉन्ग, सुपर्ब गाना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम अनुष आपके नाम डेडिकेट करते हैं, प्यार से, बहुत प्यार से। बड़े दिनों के बाद याद किया मुझे, लेकिन किया तो। और यहाँ पर फर्दिनंद मिथुन हमारे साथ है, यहाँ पर गाना होगा आपके लिए एंड ऑल्सो फॉर कविता चनू जो साथ दे रहे हमारे। गाना होगा फ्रॉम द मूवी सहेली, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इतना तो कह दे हमसे तुमसे ही प्यार है। हेलो किंग, कैसे हो, साथ दे रहे हो, थैंक यू।

0: सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, लेकिन हम सवेरे तक तो यहाँ पे होंगे नहीं। हमारा तो प्रोग्राम और अभी 40 मिनट में समाप्त हो जाएगा।
1: सुहाना सफर,
0: लेकिन सुहाना सफर है ना प्रोग्राम हमारा। और यहाँ पर सुहाना सफर का जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें आपको पता है कि हम हर तरह के गाने ले आते हैं, 60s के, 70s के, कभी एक दो 80s भी चलते हैं यहाँ पर। लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि जितने भी हो सके हम उन पुराने गीतों को आप तक पहुँचाएं। कभी कभी ये भी होता है कि हमारे दोस्त जो हैं वो अपनी गाने की फरमाइश करते हैं, लेकिन गाना जो है वो नई फिल्मों से लिया गया होता है और नए गाने हम नहीं चलाते हैं, सिर्फ पुराने गाने चलते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करते हैं राकेश के लिए। एंड यूके से हमें सुन रहे हैं आप, फर्दीनंद। ओके, लेकिन जैसे मैंने कहा कि नए गाने हम नहीं चलाते हैं, सो नेक्स्ट गाना मैं आपके नाम डेडिकेट करूंगी। थैंक यू सो मच। प्रीति हमारे साथ है, नमस्ते। और यहाँ पर जो गाना होगा वैदेही के लिए, और विदिता, ओके, वैदेही कहते हैं विदिता हम आ गए। चलो, अगर आ गए तो साथ दो। देवीना बंधु, आपका भी हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। और गाना जो होगा ज्योति लोबिन के लिए हम डेडिकेट करेंगे। गुरु जानी जो कुमारी हैं, राम राम जी, आपको स्वागत करते हैं प्रोग्राम में आपका। एंड फरानाज हमारे साथ हैं, उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए गाना होगा। हाय अभिषेक, हाउ आर यू, कैसे हो? चलो नेक्स्ट गाना आपके लिए। और साथ में यहाँ पर गाना आएगा टू अमिता चन्नू, ये है आशलिक तरफ से फ्रॉम वाली दीपित और चित्रा के लिए।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भरा फिर क्या करें। आप सुन रहे हैं इस समय रेडियो मनोरंजन RN3 पर विदिता के साथ कार्यक्रम सुहाना सफर, खूबसूरत पुरानी गीतों का सफर। यहाँ पर हम 12 बजे से इस सफर को शुरू किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाना जो होगा रीना उषा माला भावरो रिशान अजीमा स्टीव जोन्स और वीमा पेंदिया के नाम डेडिकेट करते हैं।
1: Continuous music.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: प्रोग्राम सुहाना सफर के इतने सारे हम सफर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं. चलिए नेक्स्ट गाना होगा डेडिकेट करते हैं किंग यूजर के लिए. वी हैव अशोक सुमिला नंदलाल एंड वी वेलकम हंसराज और साथ में हैं सिया. बहुत दिनों के बाद आज हमें ज्वाइन किया सो सिया आपका स्वागत है. एंड चलिए यहाँ पर साथ में एक मैसेज आया है कहते हैं हाय आई एम पल्लवी वॉचिंग यू फ्रॉम यूके. हाय यूके वालों कैसे हो. सुना है बहुत ज़्यादा गर्मी है ना. सो पल्लवी चलिए ठंडे ठंडे गाने के साथ मूड को सेट कीजिए. एंड यहाँ पर जॉनी बाबा क्या बात है आपको भी हमारे गाने पसंद आ रही हैं. थैंक यू सो मच वेलकम स्वागत है आपका. और इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट गाना होगा इसको भी आप बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हो. जानते हैं कि हर कोई यहां पर बिजी रहता है किसी का काम चल रहा है किसी का घर का काम चल रहा है लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर आप हमारे साथ जुड़े जाते हैं है ना. कौतिक सुबिता आपका स्वागत करती हूँ मैं. कहते हैं दुख बांटने से दुख कम होता है और खुशी बांटने से खुशी जो है दुगनी हो जाती है. और हम यहाँ पर इतना प्यार बांटते हैं कि वो प्यार डबल होके हमारे पास फिर वापस आ जाता है. चलो हम मैग्नेट हैं और मानती हूँ प्यार तो मिलता ही है.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट अभी थोड़ी देर में समाप्त होने को है, लेकिन चलिए इसके साथ अभी और भी बहुत सारे लोग हैं जुड़ गए हैं। पूजा कहती हैं कि नेक्स्ट गाना मेरे लेट हस्बैंड के लिए, उनको बहुत मिस कर रही हूँ, 3 महीने हुए हैं वो हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, वो जहाँ भी होंगे हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा आपको प्यार करेंगे। चलिए भाई, यादें ही हैं, उन्हीं के साथ जीना भी आपको है और अपनी ज़िंदगी को आगे ले चलना है। एक गाना गुरु कहते हैं उनकी प्यारी सी पत्नी वीना गंगा दोस्त के लिए, वहीं पर ईशिका कालोए हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू। एंड साथ में यहाँ पर दैट्स कूल, हाय कैसे हो, थैंक यू साथ जुड़ने के लिए। एंड गाना होगा फॉर ललित मोहन, सुनील सिंह जो कि गाना से हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू आपको। मिस्टर विशाल जगदम्बी एसएसएस के सभी स्टाफ्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए और

सबके लिए मांग रहे हैं जो सुन रही हैं। सुरेखा जी के लिए वी हैव जॉनी बाबा, हेलो रोबी रमेसर फ्रॉम सुरीनाम, एंड वी हैव ललिता किरण फ्रॉम कैथोस, एंड चंद्रानी पट्टीराम, उन्होंने कहा मैं आपके लिए बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ, सो थैंक यू, और ये प्यार मैं आपको दुगना करके आपके पास भेज रही हूँ, ठीक है। और यहीं पर संजीव मंदप भी हमारे साथ हैं, नमस्ते, आपका स्वागत करती हूँ मैं प्रोग्राम में। और साथ ही साथ यहाँ पर ज्योति गुली जो कि अभी अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके लिए पेश है ये गाना, फिल्म का नाम कश्मीर की कली। ये गाना हम बबीता नीमन के नाम डेडिकेट करते हैं। और साथ ही साथ वी हैव गीता फ्रॉम स्कॉटलैंड, उनकी बेटी के लिए जो आज 16 साल की हुई है, बहुत सारी प्यार के साथ।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: प्रोग्राम को आगे ले चलेंगे। नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करते हैं ज्योति जी की तरफ से, उनके सभी मौसी के लिए, प्रेमा, साकून, उमा, देवीना, संगीता, श्यामा, विद्या और कविता के लिए। वहीं पे पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है और सिगोविंद लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्या सिलेक्शन है भाई, बड़ा मज़ा आ गया। और जॉनी बाबा कहते हैं कि माँ ये तो भाई क्या है कि मेरे स्कूल का टाइम आपने याद दिला दिया। चलिए गीता जी, हम सो सॉरी, लेकिन नए गाने तो हम चलाते नहीं हैं। नेक्स्ट गाना आपकी बेटी के लिए, यशवंत जातू, आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट गाना आप जरूर पसंद करेंगी। तो ऐसा करते हैं कि अगर आपका दिल खुश हो गया तो अगले गाने के साथ भी और खुश हो जाएगा। एंड विशाल जी कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर द डेडिकेशन, मेरे कलीग्स इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, क्या बात है। आऊंगी किसी दिन स्कूल में मिलने, फिर वहीं पर बता देना, खुशी जाहिर कर देना, ठीक है। और यहाँ पर गाना जो होगा, वैसे यशवंत जी कोटेज से हमें याद कर रहे हैं, और गाना राजन जी के लिए हम डेडिकेट करेंगे। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और ये गाना जो होगा आपके लिए जाएगा रैना, ओके रवीना, इट्स रवीना ना, रवीना फॉर केशव, ओके जी। और यहाँ पर मोहम्मद हनीफ हमारे साथ फिजी से जुड़े हुए हैं, आपका हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एंड साथ ही साथ मैं घड़ी भी देख रही हूँ कि जाने का भी टाइम हो रहा है, लेकिन चलते चलते यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करेंगे ललिता के लिए, किरण के लिए, जो कथा से ऐसे हैं, चंद्रानी पति राम, जैसे मैंने कहा था अभी आपका जो डेडिकेशन है, चलो हम उम्मीद करते हैं हमने पूरा कर दिया। यहाँ पर गाना होगा मेरे सभी सिबलिंग्स के लिए, ललिता, माला और सुनील के लिए, और ये गाना जो है सीला की तरफ से होगा। और एक मैसेज आया है, उमा है क्यूट पीप से साथ दे रही है। उमा जी आपके यहाँ तो बहुत ठंड होगी ना, क्योंकि ज़्यादातर क्यूट पीप में ही इतनी ठंड होती है। कोई भी गाना फॉर मी माय ब्रदर विष्णु गंडोला और विजय, अरे एड्रेस मत दो बहन, रोजबेल से हैं, उनको हैप्पी बर्थडे, वो हो गए हैं 60 ईयर्स के, ब्लेसिंग्स फ्रॉम रतन फैमिली। एक और मैसेज पढ़ लेते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप पे भेजा है कविता जी ने फ्रॉम दिफ्रेया, कहते हैं आज हमारी बॉस मालिनी कुमार का बर्थडे है, बिलेयर रहते हैं वो, और उनको बहुत सारा प्यार, उनके पति सुनील कुमार, कविता, मोहन, रेखा, अंबिका, प्रेमिला, सबीना, उनकी बेटी जेसिका, दामाद गुलुक और साथ में उनके नाती हैं शिवांश, उन सब की तरफ से विश करते हैं उनको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: मैं प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। यहाँ पर कुवैत से खान साहब हमें सुन रहे हैं, उनको कहेंगे सलाम और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए माला प्यामाल हमारे साथ हैं। प्रेमिला पेरिस से मैं याद करिए कहती हैं कि क्या कमाल के गाने आप चला रहे हैं भाई, हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया ना। और यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं। किंग यूजर, आपको पसंद आया गाना हमारा? चलिए तो इसी के साथ मैं आपको कहूंगी, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए, साथ देते रहिए।
1: मस्ताना प्यार मेरा दीवाना,

0: RM3 Radio.
1: चलिए इसी खूबसूरत गाने के साथ एक और गाना आपके लिए लेकर आए हैं। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, लेकिन कुछ भूलने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। दरिश्मी और बेबो के लिए गाना होगा और साथ में ये गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए शकीला, जो कि हमारे साथ साउथ अफ्रीका से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच गाइज। अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है, आपसे मुलाकात करूंगी अब मैं वेडनेसडे को दिन के 12 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। हर 25 जून को विटिलिगो से ग्रस्त लोगों के खिलाफ भेदभाव की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस समस्या के तहत प्रतिरोधक कमियों के चलते त्वचा का डिपिगमेंटेशन हो जाता है और इसका प्रभाव शारीरिक से ज़्यादा मानसिक होता है, क्योंकि कई बार इससे पीड़ित लोगों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर विटिलिगो मॉरिशस फाउंडेशन ऐसे लोगों के समर्थन के लिए कार्यरत है। मुख्य रूप से उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। साथ ही इस फाउंडेशन ने हाल में परिवहन मंत्रालय से विटिलिगो से पीड़ित लोगों को अपनी गाड़ी में टिंटेड शीशे लगाने की अनुमति देने की मांग की है। व्यापार को बढ़ावा देना और स्थानीय महिला ठेकेदारों के कौशल का प्रदर्शन करना, ये नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल द्वारा कल आयोजित बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग एंड नेटवर्किंग इवेंट का उद्देश्य रहा। पोटली में आयोजित इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिला ठेकेदार एकत्रित हुई। उन्हें अपनी पैदावारें और सेवाएँ प्रस्तुत करने और साथ ही अपने पेशेवर नेटवर्क का विस्तार करने का मौका मिला। प्रस्तुतियों के अलावा ये गतिविधि भावी सहयोग तथा विकास की नई संभावनाओं के एक संयुक्त मंच के रूप में सामने आई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप सी में आज सुबह मोरक्को का सामना हुआ आईटी के साथ। स्कोर रहा 4-2। ब्राजील की टीम ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया, जबकि ग्रुप ए में साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया के बीच स्कोर रहा 1-0। चेकिया और मैक्सिको के बीच का मैच भी काफी

0: रोमांचक रहा। मेक्सिको की जीत 3-0 के स्कोर पर अभी के लिए 9 अंकों के साथ ग्रुप ए में मेक्सिको सबसे आगे है, ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड और ग्रुप सी में ब्राजील 7 अंकों के साथ। विदेश में वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक के बाद एक आए भूकंप के तेज झटकों के कारण भारी तबाही मच गई है। कम से कम 32 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मलबे तले दबे लोगों की तलाश जारी है। कई इमारतें ढह गई। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 की मापी गई। वहां आपात स्थिति की घोषणा की गई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: नाट्यकला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्यकला।
3: स्वागत करते हैं आप सभी का, दर्शकगण और श्रोतागण। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं नाट्यकला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के जरिए आप लोगों को नाटक की दुनिया से, रंगमंच की दुनिया से, थिएटर की दुनिया से जो भी बातें हैं आप लोगों तक पहुंचाने की हम पूरी पूरी कोशिश यहां पे एमबीसी की स्टूडियो से हम करते हैं। तो नाटक की दुनिया से आप जुड़े हुए हैं, आप भी नाटककार हैं, लिखते हैं, अभिनय करते हैं, तो यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आई हुई है जयंती जगदाऊ जी और साथ ही साथ उनकी बेटी एमा जगदाऊ मोती जी, दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते।
4: नमस्ते।
3: शुरुआत मैं किससे करूं, माता जी से करूं कि बेटी जी से करूं? माता जी से करते हैं। माता जी, जयंती जी आप कहाँ रहती है?
5: मैं मोसेन्द्रे रहती हूँ।
3: आप नाटक करती है, कब से नाटक करती है ये बताइए।
5: वैसे तो बचपन से मैं करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। जब शादी हुई तो उसके बाद मैंने नाटक शुरू हो गया। शादी के बाद तब वो गुरुजी जीवुत जी थे, धन्यनारायण जी जीवुत जी, उनके साथ मैंने एक फिल्म भी किया लाबुटाई। वो फिल्म क्रियोल भाषा में था। फिर हिंदी नाटक में भी मैंने अभिनय किया। अभी हाल ही में मातृ दिवस के अवसर पर हमने एक नाटक किया जो गुरुजी जीवुत जी के द्वारा लिखा गया था,
3: माँ की महिमा।
5: मातृ दिवस, हाँ, माँ की महिमा। हाँ, तो गुरुजी ने हमें बहुत तैयारी, बहुत पहले से हमें रिहर्सल करवा रहे थे गुरुजी, तो समय लेता है ये सब सीखने के लिए।
3: अच्छा, ये जो आपने बताया कि लाबुटाई, ये एक मूवी है, एक नाटक है, क्या है ये?
5: एक मूवी,
3: मूवी है ना, क्रियोल भाषा, शॉर्ट फिल्म। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका रोल क्या था इसमें?
5: मेरा रोल था कि मैं एक बच्चे की माँ थी और गुरुजी के जो बेटे थे वे मेरे पति जी थे और मेरा बेटा, वो बेटा था उसमें।
3: आपका बेटा ही बेटा था?
5: हाँ, बेटा ही बेटा था। तो यही मेरा रोल था कि मैं माँ थी, लेकिन यानी कि एक कैसे कहते हैं, शराबी की पत्नी थी।
3: अच्छा।
5: शराबी की पत्नी थी जो अब बच्चे को ये पुस्तक सब खरीदना पड़ता था, तो वे खरीद नहीं पाते थे क्योंकि वे शराबी थे,
3: इसीलिए टाइटल रखा लाबुटाई।
5: लाबुटाई, हाँ।
3: अच्छा, कितने तो, मिनट की?
5: 20 मिनट का था वो, लेकिन अंत में वो गुजर जाता है क्योंकि शराब पीते पीते वो तो बीमार होने लगा। हाँ, तो अंत में मैं रो रही थी, बच्चे मेरे गोद में थे, वो बच्ची थी श्रीमती खेदनाथ जी की बेटी थी, उनको मैंने गोद में लिया हुआ था।
3: अच्छा।
5: हाँ, बहुत सुंदर दृश्य था। हाँ।
3: और ये बताइए कि जब आपने इस रोल के लिए अपने तैयारी की, तो इसकी तैयारी के बारे में तो सब बताइए, किस तरह से रिहर्सल हुआ, किस तरह से गुरुजी ने आपको प्रेरणा दी?
5: हाँ, गुरुजी ने मुझे प्रेरणा दी।
3: जब गुरुजी की बात कर रही है तो गुरुजी धन नारायण जीवन जी,
5: जी हाँ।

0: जी गुरु जी धन नारायण जूझ जी है, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। मैं तो डर रही थी कर नहीं पाऊँगी, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की, हमें बताया कैसे कैसे करना है, अभिनय कैसे करना है। तो रिहर्सल भी कर रहे थे रात्रि में और कभी दिन में भी, बहुत बहुत रिहर्सल करना पड़ता था, तब जाके हमने उस फिल्म को पूरा।
1: बहुत ही सुंदर। और रिहर्सल के बाद गुरुजी ने पूरी तरह से आप लोगों का मार्गदर्शन किया, और आपने हमेशा गुरुजी धनाराम जूत से ही काम किया?
0: हाँ हाँ, हमेशा उनके साथ,
1: उसके साथ,
0: और एक दो बार कोई और गुरु है उनके भी साथ में, अप्रवासी भाटघाट में भी गई थी, वहाँ पर भी वो एक नाटक में भाग लिया था, वहाँ पर भी
1: गिरमिटिया। ये कहते हैं कि जब जिंदगी में, जीवन में गुरु आता है तो गुरु मार्गदर्शन दे देते हैं और सही गाइड देकर आप भी आगे बढ़ते हैं। तो आप है, हाँ बताइए।
0: मैं उन गुरुओं को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी, और आज मैं उन्हीं के बदौलत यहाँ पर बैठी हुई हूँ, नाटक के बारे में कुछ बता रही हूँ।
1: बहुत ही सुंदर। आप हमारे साथ है जयंती जगदाऊ जी, और आप रहती है और आप अकेली नहीं बल्कि आपकी बेटी भी है, ए माँ जगदाऊ मोती जी।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आप कैसे हैं?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: आप बहुत खुश है रेडियो पर आकर?
2: हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ।
1: आपकी खुशी के बारे में बताइए।
2: बचपन से ही मैं, मेरे यहाँ मतलब सुबह से ही वो कहते हैं ना 6 बजे मंदिर में घंटी बजती है, और हमारे यहाँ घंटी के साथ रेडियो भी चालू हो जाता है, और माँ हमेशा हिंदी से जुड़ी रहती है, तो शुरुआत भजन से होता है, फिर रेडियो में फ़ोन करके बातें करना बच्चों के प्रोग्राम में, फिर हम स्कूल में एक बार एमबीसी को विजिट करने आए थे और मेरे पास वो क्या कहते हैं ऑटोग्राफ वाली डायरी थी, और मैंने सभी जो एंकर है एमबीसी के साथ उनका ऑटोग्राफ लिया था, और मेरा विश था कि मैं भी कभी एमबीसी में आऊं या काम करूं, लेकिन हो नहीं पाया। मैं शिक्षिका हूं, हिंदी से जुड़ी हुई हूं, लेकिन आज मेरा जो है सपना
1: पूरा हो गया। आप रेडियो पर बात कर रही है?
2: मैं रेडियो पर बात कर रही हूँ, यकीन नहीं हो रहा है, लगता है एक सपना है।
1: मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अभी कार्यक्रम शुरू करने से पहले एमा बैठी हुई थी तो उनके आंखों में आंसू थी, इसके पीछे कारण क्या, ये बताइए।
2: ये खुशी के आंसू हैं क्योंकि कहते हैं ना इट्स हार्ड टू बिलीव। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा था कि समटाइम्स यू एस्पिरेशन लेते हैं दूसरों को देखकर, मतलब नाटक के जरिए तो हम हमेशा से अनुकरण करते हैं दूसरों का और दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, और नाटक में तो हम कई किरदार निभा पाते हैं, लेकिन लाइफ में हम, हमारा एक सपना होता है जो हम उसको पूरा करने में पूरा बहुत मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, और उसके लिए सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, लेकिन हम जो समाज में रहते हैं तो अपने परिवार के को भी संभालना पड़ता है, तो कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जब तक हम जीवित रहते हैं उसको पूरा करने में समर्थ, उसको पूरा करने की जोर कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि जहाँ निष्ठा हो, जहाँ पर हम प्रयत्न करते हैं तो भगवान हमारा रास्ता खुलता है, और आज तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी एंजल्स मुझे यहाँ तक पहुँचा लाए।
1: जहाँ भी आस्था है, निष्ठा
2: है, भी एक एंजल है मेरे लिए,
1: फरिश्ता
2: बनकर, मतलब जैसे कि मौका तो मिलता है मंच पर नाटक के द्वारा, मैं गाती भी हूँ, तो मैं एक भजन मंडली में हूँ, आर्य सनातन भजन मंडली, और मैं NAA नॉर्दर्न ऑटिस एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पर हम हर मतलब बुधवार को रिहर्सल्स करते हैं भजन के भी और कहाओ के सिंगिंग भी, तो यहाँ तक पहुँचने का जो जरिया है बहुत सारे गुरु जनों के मतलब क्या कहते हैं प्रोत्साहन के साथ यहाँ आए हैं।
1: एमा जी रुकने वाली नहीं है। मैं ढूंढ रहा था बीच में कोई मतलब पूर्ण विराम, अल्प विराम आ जाए, मैं भी घुस जाऊं बीच में, लेकिन कोई बात नहीं। आपकी खुशी का मतलब सीमा नहीं है, आप बताइए, आप बोलिए, आप रेडियो पे बोलिए। आप नहीं, एक प्रश्न के साथ हम आगे

0: आपने कहा कि आप गाती भी है और आप भजन भी करती है, नाटक के साथ किस तरह से आप जुड़े हुए
1: हैं? हमेशा से हमारी माता जी के गुरु जो है,
0: माता जी जो शादी के बाद उनका नाटक शुरू हो गया आपका कब शुरू हुआ?
1: मतलब जब मैं 12 साल की थी तभी माता जी ने लाबुतय किया था।
0: अच्छा।
1: और मैंने उसको रिहर्सल्स करते देखा है, तो वहाँ से फिर लाबुतय के बाद उसी साल 2 नवंबर को मुझे बहुत याद है, मतलब वो कहते हैं ना दिमाग में छाप छोड़ी है उस पल ने, क्योंकि 2 नवंबर को गुरुजी धन नारायण जी ने तैयारी करवाया था हमको रामलीला के लिए। हम बॉम्बू के मंदिर में गए थे, तो वहाँ पर अभिनय करते टाइम माँ तो वैसे ही रोने लगी, जोर जोर से आँख से आंसू भी बहने लगे,
0: सच में रोने लगी।
1: वो अपने मतलब पात्र में ऐसे घुस गई, तो माँ रो रही थी, मैं उसके बगल में थी, मैं भी कुछ मेरा भी कुछ योग मतलब कोई पात्र में खेल रही थी, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन माँ मेन कर रही थी, तो वो सच में रोने लगी थी मेरे बगल में। और वहाँ के जो लोग थे पंडाल के सारे लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, तो वो क्षण मेरे मतलब पूरे दिमाग में छा गई, और उसी दिन मैंने निश्चय कर दिया कि मैं भी नाटक में इस तरह काम करूँगी।
0: देखा, एक माँ माँ ने बेटी को रास्ता दिखाया और माँ बेटी को रोते हुए देख रहे थे और कहा कि हाँ हम भी रोएंगे नाटक में और हाल में ही क्यों आप लोगों को यहाँ पे बुलाए, क्योंकि हाल में ही मातृ दिवस के अवसर पर आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सा नाटक प्रस्तुत किया गुरु जी के निर्देशन में, धन नारायण जीवत जी के निर्देशन में, उनके लेखन द्वारा उन्होंने यह नाटक लिखा और यहाँ पे MBC में आकर प्रस्तुत किया, जो हमें सुन रहे और देख रहे आप लोगों ने शायद MBC में इसका इस नाटक को देखा भी है। बहुत ही सुंदर नाटक है, माँ के ऊपर है। तो हम जानना चाहेंगे, आप दोनों ने सास बहू का रोल निभाया, पात्र निभाया, वैसे तो आप माँ बेटी है, तो आप ए माँ जी आपकी तैयारी कैसे होती है जब आप कोई नाटक खेलने जाते हैं? तो
1: नाटक खेलने जाते हैं तो मतलब नाटक में विभिन्न प्रकार के अभिनय करना होता है, कोई जैसे कि कभी होता है करुण भावना, तो कभी क्रूर व्यक्ति की का अभिनय करना पड़ता है, कभी हास्य लोगों को हंसाना, और कभी भिखारी की तरह, या कभी डॉक्टर या रानी ऐसे, तो उस हिसाब से हमें तैयारी करना पड़ता है। और मतलब जो डायरेक्टर होते हैं नाटक के, तो उनका पहले से दिमाग में एक मतलब कैरेक्टर के बारे में वो सोच कर ही कैरेक्टर को चूज़ करते हैं, कौन मतलब ये किरदार निभा पाएगा। तो मुझे गुरुजी ने चूज़ किया था, क्योंकि जब हम दूसरे नाटक में कभी गुरुजी के साथ थे, तो अपार्ट फ्रॉम आवर
0: नाटक
1: का हाँ सीन, तो बीच में जब मैं माँ से बातें करती हूँ तो कभी उससे उसको डांटना पड़ता है, क्योंकि माँ जो है ना वो कहेगी अरे टाइम देखो तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, ये करो, तो मैं उल्टा उसको डांटती हूँ और कहती हूँ जब मैं कर रही हूँ मुझे करने दो या ऐसा। तो मतलब माँ भी समटाइम्स वो मुझे डांटती है, तो नॉट बुरी तरह से नहीं, मतलब
0: प्यार के साथ। हाँ,
1: तो मैं उस टाइम उसको दांत भी देती हूँ, तो गुरुजी ने वो देखा था, तो जब माँ की महिमा नाटक लिखी तो गुरुजी ने माँ को फ़ोन किया और उसने कहा मुझे बहू में आपकी बेटी को ही चाहिए,
0: क्योंकि आप दोनों का रिश्ता सास बहू की तरह है, माँ बेटी की तरह नहीं
1: तो इसलिए गुरुजी ने मुझे चुना। लेकिन जब मैंने वो स्क्रिप्ट देखा तो मुझे डर लग रहा था, मैं सोच रही थी कि मैं तो हंसने वाली हूँ यहाँ पे, तो मतलब गुस्से वाली, तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने ये भी रूप देखा है मेरा असल
0: अच्छा,
1: लाइफ
0: में। आपको कोई डायलॉग याद है माँ की महिमा नाटक का, जहाँ पे आप डांट रही है?
1: हाँ, क्या सोचती हो, मैं दिन भर यहाँ बैठी रहती हूँ

0: कुछ काम नहीं करती। मैं बताऊं मैं क्या करती हूं? मैं तुम्हारे बच्चों को रोज तैयार करके स्कूल छोड़ने कौन जाता है, मैं या तुम? रोज तुम्हारे परिवार के लिए ताजी ताजी सब्जियां बाजार से कौन लाता है, मैं या तुम? और बताऊं तुम्हारे कपड़े धो धा के सुखा के अलमारी में समेटता कौन है, मैं या तुम? बताओ अब क्या हुआ? बोलती बंद
1: नहीं, अब बोलती बंद क्योंकि एक गाना सुनते हैं, उसके बाद बातचीत जारी रखते हैं। तो अब एक गाना सुन लीजिएगा।

0: जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा, नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: ए माजी ने इस तरह से अपना डायलॉग शुरू किया कि मैं या तुम, कपड़े कौन समेटता है, मैं या तुम, हम तो डर गए। कार्यक्रम से पहले

0: नहीं, मैं उसे ऐसा मिला तो करना पड़ा ना,
1: जबरदस्त होता है। जल्दी आपसे, जयंती जी आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा
0: जी।
1: आप एक गृहिणी है, एक घर वाली है, आपका परिवार है, आपके पति है, आपके बच्चे हैं, और आपने कहा कि शादी के बाद जो है आपने नाटक में भाग लेना शुरू किया। कई लोग सोचते हैं कि मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने गीत गा लिया, सोशल वर्क वगैरह सामाजिक कार्य में भाग ले लिया, अभी मैं शादी करूंगा या फिर शादी करूंगी तो घर बसाऊंगा, बस ये सब खत्म समाप्त। आपने उसका उल्टा किया। तो पति की ओर से किस तरह का सहयोग मिलता है, किस तरह से आपको प्रोत्साहित करते हैं कि जाओ, जाइए जयंती जी, आप जियो अपनी जिंदगी, इस तरह का डायलॉग हाँ, किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं?
0: पति जी वे सहयोग करते थे, बच्चों को संभालते थे और घर का काम में भी मेरा हाथ बटाते थे, मुझे रिहर्सल के लिए ले जाते थे, इंतजार करते थे, फिर आते थे तो वे नहीं होंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी ना, उनका सहयोग बहुत रहा, नहीं तो आज मैं नहीं कर पाती, यहाँ तक नहीं पहुँचती।
1: आपने कभी उनसे पूछा नहीं आप भी नहीं करेंगे, भाग नहीं लेंगे नाटक में?
0: वो लाबुतई में उन्होंने भाग लिया था।
1: अच्छा, हाँ। पूरा परिवार कलाकार ये तो हम जानते ही नहीं थे।
0: हाँ।
1: लाबुतई में भाग,
0: हाँ,
1: लिया,
0: भाग
1: था।
0: लिया था उसमें। हाँ।
1: लाबुतई जरूर देखेंगे।
0: हाँ हाँ देखिएगा, बहुत सुंदर है।
1: और
0: हाँ?
1: बताइए पति के बारे में, और सिर्फ लाबुते में भाग लिया और नाटक में भाग लिया?
0: हाँ, वो पहले, वे शादी से पहले भाग लेते थे वो भोजपुरी नाटक में, लेकिन शादी के बाद एक ही बार गए, फिर कहा कि बहुत समय लगता है काम में व्यस्त रहता था तो नहीं जा पाते थे, लेकिन वे भी पसंद करते हैं नाटक, इसलिए तो हमें भेजते हैं ना।
1: तो काफी उन्होंने नाटक में भाग लिया।
0: हाँ हाँ, पहले
1: तो अगली बार जरूर उनको बुलाएंगे, उनसे बातचीत होगी। हाँ, उनका अच्छा, नाम क्या है महाशय का?
0: उनका नाम है रविंद्रनाथ जगदाऊ।
1: रविंद्रनाथ जी अभी सुन रहे हैं हमें, देख रहे हैं?
0: हाँ हाँ सुन रहे होंगे।
1: बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो रविंद्रनाथ जी बातचीत तो होगी जरूर एक बार, और अभी आपके परिवार के बारे में बात करे हैं तो जयंती जी के बाद बारी आई है ए माँ जी, मैं कुछ बोल दूं?
2: हाँ बोलिए।
1: हाँ मैं बोल लेता। जैसे जयंती आपकी भी आप शादीशुदा हैं?
2: जी हाँ।
1: आपके बच्चे भी हैं?
2: मेरे बच्चे भी हैं।
1: वही प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपकी माँ ने कहा कि पति की ओर से सहयोग भरपूर मिलता है, तो आपके परिवार की ओर से किस तरह से सहयोग? क्यों मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि काफ़ी कलाकार मुझे मिले हैं, उन लोगों ने कहा कि अब शादी हो गई है तो नाटक नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आप लोग एक उदाहरण है, इसके बारे में बताएं किस तरह से परिवार की ओर से सहयोग मिलता है।
2: हमें बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, क्योंकि कभी बच्चों को संभालना पड़ता है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, कभी मतलब कभी अगर मेरे पति देव घर पर नहीं होंगे तो मैं कहूँगी कि हमारे सासू माँ की मदद लेनी पड़ेगी, बच्चों को सासू माँ के यहाँ छोड़ेंगे।
1: ये शब्द जिसका प्रयोग आपने किया पति देव, बहुत ही कम सुनाई देता है, मतलब नाटक का डायलॉग नहीं है ये, असलियत में आप कह रहे हैं पति देव।
2: हाँ
1: अच्छा है, बताइए और बताइए।
2: हाँ, तो फिर कभी वो उनका होता है जिम जाना या क्या कहते हैं मैदान में दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना, तो वो अरेंजमेंट कर लेते हैं कि तुम जाओगी तो कितने बजे वापस आ जाओगी, ये सब, और फिर खाना बनाना ये सब आयोजन करने ना पड़ता है, कभी सुबह 5 बजे उठकर खाना तैयार करने ना पड़ता है, या फिर थोड़े बहुत मेरी मदद मेरे हस्बैंड भी करते हैं आज, मतलब पहले
1: हस्बैंड देव जी,
2: हाँ पहले नहीं करते थे, लेकिन जब बच्चे हो गए तो मुझको ज़्यादा समझने लगे तो मेरी मदद करने लगे रसोई घर में भी, मतलब समटाइम्स जब मैंने पूरा मतलब भोजन का प्रबंध नहीं किया तो वो आडन कर सकते हैं, कुछ तैयारी कर देंगे,
1: बहुत ही
2: तो सब्जी बना देंगे या भात, तो मेरी मदद ऐसे करते हैं, और कभी बच्चों को संभाल लेते हैं, और मेरी मतलब मैं कहूँगी अगर वो नहीं होते तो मैं आज जहाँ पर हूँ वहाँ पर नहीं होती, मेरे हस्बैंड अभी हेडमास्टर है, हाँ तो पोट्रिस के स्कूल में हेडमास्टर है, तो उनको भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो मेरी मदद करते हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ।
1: नहीं
2: शायद ऑफिस में, स्कूल में होंगी। हाँ
1: तो ये प्रोग्राम जो है वो

0: सोशल नेटवर्क पर मतलब फेसबुक पर भी चल रहा है, तो उनको आप दिखा दीजिएगा।
1: हाँ।
0: जिसे जयंती जी ने कहा कि उनके पति भी भाग लेते हैं, आपके पिता भी भाग लेते हैं, तो आपके हस्बैंड भाग नहीं लेते हैं नाटक?
1: वो नाटक में भाग नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन वो मेरे साथ कहा हो कि गाते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: तो एमा जी कहती है कि वो गाती भी है, नाटक भी करती है, तो समय आ गया है एक गाना एमा जी की आवाज में।

0: हस्बैंड देव जी सुन रहे हैं अभी। बहुत ही अच्छा। आप किससे गाना सीखते हैं?
1: मैंने कई गुरु जीओं से गाना सीखा है। पहले हम गुरुजी चमन मोहनलाल चमन जी से सीखते थे, फिर NAA में मैंने गुरुजी देमका से
0: नॉर्दर्न आर्टिस्ट एसोसिएशन में
1: से संगीत में शिक्षा ली। फिर हमारे गुरुजी और हैं गुरुजी जिबोधन जी, चंद्रदेव जिबोधन जी, उसके साथ कहाँ होके मैं मतलब प्रैक्टिस की है। फिर अभी हमारे जो भजन मंडली है आर्य सनातन भजन मंडली, हमारे गुरुजी है श्री राज दुलवा जी, तो वो हमें भजन भी सिखाते हैं और हमारे गाँव के लिए प्रैक्टिस भी कराती है।
0: तो मतलब काफी गुरुजन है आपके जीवन में।
1: और काफी दांत खाने के बाद यहाँ पर आए हैं।
0: क्या बात है। नहीं नहीं, वो क्या होता है ना कि कहते हैं कि हीना तब रंग लाती है पत्थर में पीस जाने के बाद, मेहनत तब रंग लाती है ठोकर खाने के बाद।
1: बिल्कुल सही।
0: तो रंग ला रहे है, इसलिए तो आप रेडियो पर है, बात कर रहे हैं, सभी लोग पूरा मॉरिशस आपको सुन रहा है। और एक और गाना सुन लेते हैं, उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: यह कार्यक्रम आप सभी लोगों के लिए है जो नाटक पसंद करते हैं। हमारे साथ है माताजी और उनकी बेटी जी, जयंती जी और एमा जी, दोनों आ गए हमारे स्टूडियो में और नाटक के बारे में बात कर रहे हैं। तो जयंती जी, आपसे हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को लेकर। आपने कहा कि आप नाटक में भाग लेते हैं और खासतौर पर हिंदी नाटक में और क्रियोल नाटक में भी
2: जी।
1: और आपने कहा कि आप हिंदी भी सिखाती है बैठका में
2: जी,
1: थोड़ा सा इसके बारे में बताइए
2: जी। मैं हिंदी सिखाती हूँ लगभग 25 सालों से, वहाँ पर महर्षि दयानंद हिंदी पाठशाला में मुसलमान से तौंद्र में मैं वहाँ पर हिंदी सिखाती हूँ। बहुत बच्चे हैं, बच्चे आते हैं वहाँ पर हिंदी सीखने आते हैं, और मैं वहाँ पर कुछ भजन भी सिखाती हूँ।
1: लगभग कितने बच्चे आते हैं वहाँ पे?
2: वहाँ 40
1: 40 के ऊपर।
2: हाँ।
1: और प्रवेश का परिचय प्रथमा उत्तमा तक जाते?
2: नहीं,
1: उत्तमा तक नहीं,
2: प्रवेशिका, प्रवेशिका तक है, क्योंकि
1: छोटे बच्चे भी है और प्रवेशिका तक है। और एमा जी, आप भी हिंदी सिखाती है?
3: जी हाँ, मैं हिंदी सिखाती हूँ माताजी के साथ, उसकी मदद करती हूँ। और हम बच्चों को हिंदी सिखाते टाइम उनको बहुत सारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए उनको चित्रकला के माध्यम से हिंदी सिखाते हैं, फिर माटी दिवस पर कौत इत्यादि, मतलब उनको हमेशा व्यस्त रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। फिर उनको गीत भी सुनाते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को अगर हम गीत हिंदी गीत नहीं सुनाएंगे तो वो हिंदी के प्रति उनकी रुचि नहीं होगी।
1: आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ जीते हैं। तो आप एक शिक्षिका भी है, एक टीचर भी है
3: जी। हाँ।
1: जनरल नॉलेज की।
3: हाँ।
1: और अन्य बच्चों के साथ आप रोज काम करते हैं।
3: हाँ।
1: ये मैं पूछना चाहूँगा कि बच्चों, आजकल के बच्चों के साथ किस तरह से आपका अनुभव कैसा रहता है, और आप क्या नाटक के जरिए उन लोगों की पढ़ाई आप करवाती है?
3: हाँ, कभी नाटक का जरिया भी लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हम उनको समझाएंगे वर्ड्स में तो वो कठिन हो जाता है उनको रिमेम्बर करने के लिए। अगर वही हम उसको एक्ट करके, रोल प्ले करके या नाटक करके बताएंगे तो विदाउट वर्ड्स वो समझ जाते हैं।
1: एक उदाहरण आप देंगे
3: अभी के लिए, जैसे कि क्या करें, मैंने सोचा नहीं।
1: तो सोचे तब तक मैं जनता से बात करता हूँ कि हमारे साथ है एमा जगदाऊ मोती जी और उनकी माता जी भी है जयंती जगदाऊ जी है। दोनों मौसम से आई है और दोनों नाटक में भाग लेते हैं, नाटक करती है माँ बेटी। बहुत अच्छा लगता है जब एक ही घर में सब कलाकार होते हैं। अभी जयंती जी ने कहा कि उनके पति भी नाटक करते हैं, और जब पूरा परिवार नाटक करते हैं और सभी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं तो ये जो कला है वो जीवित रहती है, और बच्चे भी बाद में आकर इसी नाटक को लेकर वे अपना जीवन जीते हैं और अपनी भावना

0: भावों को इन नाटकों के माध्यम से, मंच के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। एमा जी तैयार?
1: जी।
0: एक उदाहरण दीजिए, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाती है नाटक के जरिए?
1: जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए एक नाटक करेंगे, तो क्लास में ही विद द थिंग्स जो उपलब्ध है क्लास में, तो सभी के जो क्या कहते हैं खाने की टोकरी ले ली, तो उसको कहेंगे कि मान लो ये शॉपिंग बैग्स है, किसी एक लड़की को ढेर सारे शॉपिंग बैग्स दे दिया तो वो कक्षा में ऐसे इतरा के आएगी और बोलेगी ये देखो ये हैबिट का है, ये ब्रांड्स के नेम बताएगी और बोलेगी कितने कितने खर्च करके वो डिफरेंट कपड़े खरीद कर आई है। तो कोई दूसरा होगा बच्ची या बच्चा, वो कहेगा अरे इतने सारे शॉपिंग जो कर रही हो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितना तुम ये कपड़े खरीद रही हो उतनी ही हमको अगर वो वूल का है मतलब ऊन से बना है तो भेड़ को भेड़ से लाना पड़ता है, ये जो बाग्स लिए है वो उसको पेड़ को काटना पड़ेगा और उसको इम्पोर्ट किया है तो शिपिंग कॉस्ट, ये सारे के सारे हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, तुम जितने भी शॉपिंग करोगे तुम्हारा वेस्ट भी मतलब ज़्यादा होगा, तो इस हिसाब से जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत तुम ही बताओ। तो वो बच्चा जान जाएगा हाँ ये सारा खर्च कर रहा है वो एनवायरनमेंट पर, इनडायरेक्टली उसका हर एक जो एक्शन है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। जितने भी हम खर्च करेंगे उतने ज़्यादा हमारा वेस्ट होगा जो लैंडफिल्स में जाएगा, तो वो दूसरा उसको समझाने की कोशिश कर रहा है दिस इज़ रॉन्ग, तो वो कहेगा आज से मैं रिसाइकलिंग करूँगी, जो मेरे माँ की पुरानी साड़ी है मैं उसको काट कर नए वस्त्र बनाऊँगी, उसको एक नया रूप दूँगी। तो ये हो गया एक छोटा सा नाटक ऑन द स्पॉट।
0: बहुत ही सुंदर। इमान जी के खास प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप बच्चों के साथ काम करती है, प्राइमरी स्कूल में आप काम करती है, कई बच्चे लोग आजकल एक दो उदाहरण मिले हैं ऐसे, वो बच्चे लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं आजकल क्योंकि मोबाइल के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए कक्षा में फोकस नहीं कर पाते। क्या नाटक, थिएटर या फिर रंगमंच है सहायक हो सकते हैं, सहायता करते हैं लोग बच्चों में फोकस फिर से लाने के लिए?
1: हाँ, क्योंकि अगर आप बोलते जाएंगे तो बच्चों को मतलब वो उसका जो रिटेंशन पावर होता है वो 5 मिनट आपको सुन लिया और आप कंटिन्यूस भाषण करेंगे तो वो आपको ध्यान ही नहीं देगा, उसको उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए आप उनको इंतरा करवाइए, कोई नाटक ही प्रस्तुत कर दीजिए, तो वो जो कॉन्सेप्ट है तो वो जल्दी से उसको ग्रास्प कर देता है। तो वैसे हमारे स्कूल में, मैं मोसे तोंगे सरकारी पाठशाला में काम कर रही हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि फायर फाइटर्स आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कैसे फायर से बचना चाहिए, उस फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर जो एनजीओज है वो भी आते हैं, वो चित्रकारिता और चलचित्र मतलब छोटा शॉर्ट फिल्म होता है उसके माध्यम से वो बच्चों को सिखाते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है जो मतलब कम्युनिटी और टीचर्स और बच्चों का और पेरेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है उससे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनको मतलब याद होता है जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने देखा है, मतलब उसको क्या कहते हैं उसको जिया है, तो वो याद करते हैं और सारे के सारे उनको याद होता है कॉन्सेप्ट्स।
0: बहुत ही सुंदर। और ये भी बताया जाता है कि नाटक के ज़रिए बच्चों में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है और बच्चे लोग डरते नहीं है ऑडियंस को फेस करने के लिए, पब्लिक को फेस करने के लिए। जब भी बाद में आकर बच्चों को हम मंच पर बुलाते हैं तो बच्चे डरते नहीं है। तो इसी कार्यक्रम के साथ और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: मुख्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक हिस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: नाटक एक सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम बच्चों में पढ़ाई में रुचि फिर से ला सकते हैं और बच्चों के फोकस, उनके अटेंशन को हम कैप्चर कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं और बच्चे को डिफोकस नहीं करवाते हैं। नाटक वो माध्यम है और बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हम पैदा कर सकते हैं। ईमान जी, आप बच्चों के साथ काम करती है तो प्रश्न हम पूछना चाहेंगे कि आपने बच्चों को लेकर एक नाटक नहीं किया, फिल्म नहीं की?
2: मैंने नाटक नहीं किया बच्चों के साथ, लेकिन मैंने अपने मतलब जो मैं पिछले स्कूल में थी, दनेश्वर सिवखास गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर मैंने बच्चों को शॉर्ट फिल्म में भाग लिया था हमारे स्कूल ने, और मैंने लिखा था फिल्म और फिर मुझे गुरुजी जीवित के पास जाना पड़ा था क्योंकि मेरी फिल्म में बहुत मतलब टाइम फ्रेम था 7 मिनट का, लेकिन मेरी फिल्म बहुत लंबी थी तो मुझे गुरुजी जीवित का की मदद लेनी पड़ी। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की लिखने में, फिर से एडिट करने में। फिर हमने बच्चों को तैयार किया, उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने बच्चों को जैसे गुरुजी ने बताया मैंने उनको गाइड किया। और आप नहीं मानेंगे, मेरे स्कूल के बच्चे जो मतलब सहमे सहमे रहते थे, बातचीत नहीं करते थे, उसमें भाग लेकर, वो क्रियोल भाषा में थी, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है बदल गया उस फिल्म में भाग लेने से। और उनको हमारे स्कूल को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। हम बहुत खुश थे, ये तो मतलब
1: ये हाल ही की बात है।
2: हाँ,
1: बहुत बधाई आपको आपके स्कूल।
2: और फिल्म का नाम था बेन।
1: बेन बहुत ही सुंदर। तो जयंती जी, आप भी बैठका में काम करती है और बच्चों को आपने कभी भी नाटक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, फिर करवाया वहाँ पे?
3: प्रोत्साहित करती हूँ, अभी मैंने सोचा है, गुरुजी जीवित जी से हम बोलेंगे तो गुरुजी ने कहा है हमारे लिए तैयारी कर देंगे, तो शायद कुछ समय लगेगा।
1: बाकी अन्य गतिविधियों में भाग लेते हैं, कहानी कविता वगैरह?
3: हाँ हाँ, बच्चे भाग लेते हैं, कविताएं और कहानी भी बच्चे बोलते हैं।
1: अच्छा, एक प्रश्न के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों बैठका के साथ हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं। कभी भी बच्चे लोग, हम देखते हैं कि बैठका में हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम हो गई है, आपके देखने में कारण ऐसा क्या है?
2: ऐसा कारण इसलिए है क्योंकि जो बच्चे है ना, जो लोअर प्राइमरी में है वो हिंदी में आती है। जैसे कि अपर प्राइमरी में जाएंगे तो माता पिता उनको अकादेमिक के लिए ज़्यादा फोकस कराते हैं, तो इसलिए उनका होता है ट्यूशन, तो वो प्रीफर करते हैं कि वो ट्यूशन जाए ना कि बैठका आए, तो इस हिसाब से बच्चे कम होते हैं।
1: नहीं, हर भाषा तो उनकी मान्यता होती है, उनका इम्पोर्टेंस होता है।
2: हाँ,
1: हर ट्यूशन भी उसका इम्पोर्टेंस होता है।
2: हाँ, लेकिन बच्चों के माता पिता को ये भी समझना चाहिए कि हिंदी लैंग्वेज जो है, एनी लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर, ए लैंग्वेज इज़ ए माध्यम, एक माध्यम है नॉलेज को ग्रहण करने के लिए। क्योंकि मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ तो मैं हिंदी के बारे में बोलूँगी। हिंदी में बहुत सारे काव्य हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं और उनमें ज्ञान जो है अन्य मतलब भाषाओं में भी ये ऐसा होगा, लेकिन अगर हम अपने भाषा को नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे उन पुस्तकों के बारे में नहीं जानेंगे, उसके ज्ञान के बारे में कोई नहीं जानेगा और उनके ज्ञान को बांटने वाला भी कोई नहीं होगा। तो हमें एज ए पेरेंट हमें को ये भी जानना है कि हमारी इट्स नॉट फॉर सर्टिफिकेशन के लिए ज्ञान हासिल करना ज़रूरी नहीं है, हमें ज़रूरी है व्यक्तित्व को निखारने के लिए। मतलब छात्र चाहे वो कम पर हो, लेकिन किसी भी लैंग्वेज में अगर उस का जो है जोर मजबूत होता है तो वो लेट डेवलपर भी हो सकता है और अपने जीवन को बहुत ऊंचे पद पर ला सकता है, क्योंकि ए लैंग्वेज इज ओनली ए माध्यम और आप लैंग्वेज पर बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि वो कम पर है या क्या। मतलब हिंदी आप जानते हैं, हिंदी का पहला अक्षर है अ और समाप्त होता है ज से, तो अनपढ़ से हो जाता है जानी। तो ये बात मानकर चलिए अगर आपके बच्चे हिंदी सीखते हैं, इट कैन बी नॉन हिंदू ऑल्सो लर्निंग हिंदी। हमारे पाठशाला में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो सीख कर गए हैं, जो नॉन हिंदू है लेकिन हिंदी सीख कर गए हैं और हमेशा प्राउड फील करके गए हैं। तो अगर हम एग्जांपल दे सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए।
1: बहुत ही सुंदर। और आजकल एक कह सकते हैं कि मान्यता चल रही है कि जब बच्चे लोग हिंदी नहीं पढ़ना

0: ना चाहते हैं तो अभिभावक पेरेंट्स से लेटर लिखते हैं, बोलते हैं कि अब मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी हिंदी नहीं पढ़ेगी। तो आप एक शिक्षिका है, तो ऐसे लेटर जब आती है तो आपका रिस्पांस कैसा होता है?
1: मैं शिक्षिका हूँ तो मुझे मुख्य अध्यापक से या मुख्य अध्यापिका से बातचीत करनी होती है, फिर हम उसके पेरेंट्स से एक मीटिंग रखते हैं उसको समझाने के लिए कि आपका डिसीजन किस ग्राउंड पे बना है। अगर सिर्फ रिजल्ट के ग्राउंड पे है तो वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, तो बच्चा गलती करता है तो उसको फिर से सुधारने का मौका देना चाहिए, ना कि उसका मतलब वो रास्ता बंद कर दो। अगर आपने उसको लेक्चर लिख कर बंद कर दिया, अगर उस स्कूल में क्रियोल मोशन नहीं है, हिंदी के स्थान पर नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा? बैठा रहेगा, मतलब
0: कुछ नहीं करेगा,
1: तो उसका समय भी बर्बाद जा रहा है और उसका एक, जैसे कहते हैं, एक मार्ग होता है जहाँ पर वो आगे बढ़कर कुछ कर सके, वो मार्ग आप उसको अभी से ही बंद कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड, हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं।
0: बहुत ही अच्छा है, कोई भी भाषा आप उसको सीखेगा, खासतौर पर अगर हम हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, और हिंदी को आप सीखेगा ज़रूर, क्योंकि अन्य जो हिंदी भाषी नहीं होते हैं वे लोग आकर हिंदी सीखते हैं और हिंदी में दक्षता प्राप्त करते हैं और बाहर जा कर के प्राउड फील करते हैं। एमा जी आप आई हुई है, एमा जगदाऊ मोती आप मोसे मसे तौंदे रहती है, आप आई हुई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती जगदाऊ जी भी आप आई हुई, माँ बेटी नाटक में भाग लेती है, आप लोग ऐसे जारी रखिएगा। और आप लोगों के गुरुजन को शत शत प्रणाम जो आप लोगों को भाषा सिखाते हैं, आप लोगों को गीत सिखाते हैं और नाटक भी सिखाते हैं। एमा जी, जयंती जी,
1: धन्यवाद,
0: बहुत धन्यवाद। तो समय भी समाप्त हो गया है, तो चलिए कि प्यारे से गाने के साथ आप लोगों को छोड़ के जाते हैं। अगले कार्यक्रम के लिए जरूर हम मिलेंगे, इस बार हमारी ओर से नमस्ते।
2: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा, नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 2300 से ज्यादा परिवार मॉरिशस के सोशल रजिस्टर में पंजीकृत होने वाले हैं और उन्हें नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से सहायता मिलेगी। पहली जुलाई से इसके लिए योग्यता की सीमा बढ़ाई जा रही है। बजट 2026-2027 में इसका ऐलान किया गया। इसका उद्देश्य है ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करना। अभी के लिए सोशल रजिस्टर में 5200 परिवार पंजीकृत हैं। अफ्रीकी इलाके में फिनटेक की दुनिया में मॉरिशस की पहचान मजबूत करना और इसके लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को और आसान बनाना, ये मॉरिशस नेशनल फिनटेक स्ट्रेटेजी 2026-2030 के मकसदों में शामिल है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका इस तकनीकी सहायता से ये दस्तावेज बनाई गई है। आज इसकी औपचारिक लॉन्चिंग की गई। व्यापार को बढ़ावा देना और स्थानीय महिला ठेकेदारों के कौशल का प्रदर्शन करना, ये नेशनल वीमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल द्वारा कल आयोजित बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग एंड नेटवर्किंग इवेंट का उद्देश्य रहा। पोटली में आयोजित इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिला ठेकेदार एकत्रित हुई। उन्हें अपनी पैदावारें और सेवाएं प्रस्तुत करने और साथ ही अपने पेशेवर नेटवर्क का विस्तार करने का मौका भी मिला। विदेशी समाचारों में वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक के बाद एक आए भूकंप के तेज झटकों के कारण भारी तबाही मच गई है। कम से कम 32 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या के बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। मलबों तले दबे लोगों की तलाश जारी है। कई इमारतें ढह गई। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 की मांग की गई है। वहां आपात स्थिति की घोषणा की गई है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। 58 साल के 58 years old के श्रीदीप नाथ हरलुल जो शैलेश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे मोगा फ्यूनरल पृथ्वीया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। रारोड बनमेया में 74 साल के 74 years old के श्री रामदत्त कोकिल जो जीवन रामबो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनकी पत्नी कमला कोकिल के मकान रारोड बनमेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेदिन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन

0: सभी को हमारी ओर से, साथ में टेक्निक पर यूसुफ और प्रोडक्शन सहायिका ओरुसा और हमारे जो प्रोड्यूसर जिनेश, सब की ओर से नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर हमारा साथ देंगे। वैसे आज एक हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हर घर से जुड़ी हुई समस्या पर चर्चा करेंगे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की कीमत यानी कि प्राइसेस। तो आज के समय अगर देखा जाए तो सेहत सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सभी के लिए, लेकिन क्या दवाइयाँ हर आम आदमी की पहुँच में हैं या बढ़ती कीमत लोगों के बजट को मुश्किल में डाल रही है? तो इसी विषय पर ज़्यादा खुलासा देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है स्टूडियो में हमारे दो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट से हमारे दो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनसे आप लोग बड़ी भांति परिचित हैं। आप हैं श्री विशाल सिंह लालमन जी और श्री सूरज लाल बिहारी जी। आप दोनों का स्वागत हम करते हैं, नमस्कार। और जैसे कि अभी हमने कहा कि आज हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की कीमत यानी प्राइसेस पर बात करने जा रहे हैं, तो पहले श्री लालमन जी, दवाई के दाम इतना चाहेला जरूरी कंट्रोल करेंगे, तो ये जो तथ्य है, ये जो पहलू है कंट्रोल खातिर, इकाहे जरूरी है, इकाहे महत्वपूर्ण है?
1: हाँ, जैसे बोला सब दवाई इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आवेला, तो काहे खातिर बस की दवाई जैसे बोला वो बहुत महत्वपूर्ण है एक देश में। काहे जब हमने के लड़का से लेके हमने के बुजुर्ग ले सब कोई जब बीमार रहे लंस दवाई ले लन स, तो एगो हमने के मंत्रालय एगो ऐसा योजना आने लन जे जैसे अफोर्डेबिलिटी बोली ला सकियन स पहुँचे हो दवाई दवाई के दाम में, तो हवे खातिर है सब दवाई कंट्रोले होला हमने के मंत्रालय देने काहे कंट्रोले होला जमे सकियन स सब हमने के जितना जैसे बोलनी लड़का ले हमने के बुजुर्ग लेक ओके लोग के चाहेला है दवाई वा एगो अफोर्डेबल प्राइस में, तो हवे खातिर हमने के मंत्रालय हव दम वा कंट्रोले होला करे कलेलन। जैसे बोलनी आगे हमने के देश में जितना दवाई बा वो सब एपोते होला,
0: तो दवाई के दाम दवाई के एम्पोटेशन खाली मिनिस्टर देने से होला या प्राइवेट एम्पोटेटर भी होला?
1: नहीं, एम्पोटेटर लोग आने लंस ढेर एम्पोटेटर होवन बेसुआ आने लंस दवाई, तो वो लोग जैसे आने लंस तो हमने के हमने लगे मंत्रालय में एगो कॉस्टिंग विदा कर देवे लंस बस की काहे हथिन हौ सब दवाई वा हमने के मंत्रालय कंट्रोले करेला, तो एगो कॉस्टिंग विदा करियन तो एगो प्रॉफिट मार्जिन जैसे बोली ला सा जितना दवाई बा हमने के देश में वो लोग हव दवाई वा में मैक्सिमम रिटेल प्राइस रहेला MRP जैसे बोली ला सा मैक्सिमम रिकमेंडेड रिटेल प्राइस, तो है सब हमने के मंत्रालय कंट्रोले करेला कैलकुलेट करेला तब हव एगो होलसेल प्राइस बा और एगो रिटेल प्राइस बा, तो हमने मुख्य मंत्रालय कैलकुलेट करके तब हव एम्पोटेटर वा के देवेला और हव जो दाम वा देले हैं सर ओकर से कमती सकी बेची ओकर से ज्यादा नहीं बस की काहे खातिन हमने के मंत्रालय हव दाम वा दे दिले हवन ओके बेचे के।
2: वास्तव में हमने के जन हमने के समाज एगो स्वस्थ समाज में रहे इ कारण हमने के दवाई एगो एगो बुनियादी अधिकार रही हमने के जैसे लेको लिजिकाश हमने के जन वंशो जन माला दूध बर रहेला उन लोगों को छोटा पैसा मिलेला सोशल सिक्योरिटी के आधार पर और लासौते भी है पोत तो हमने के लोपिताल फ्री है में दवाई सब मिलेला, लेकिन कोनो दवाई पहला किने के कारण हम लोग के जन दवाई जन किनी ला जाना जब हमने के समाज जब स्वस्थ रहे हेल्दी सोसाइटी रहे हमने के तो सरकार हमने के हई हमने के जितना दवाई जन किनी ला जा फार्मासी में हमें एगो मौकअप दलाल बा, यानी कि अभी जो हाल ही में हमने के एगो रेग्रेसिव मौकअप दलनी जा रेग्रेसिव का अर्थ का है हमने के जितना महंगा दवाई बा ओकर प्रॉफिट वा कमती है, यानी कि कंसोमाते हमने ग्राहक जो बा सकल जाए

0: किने हो सब दवाई ये कारण हर एक जितना दवाई बा हमने के एगो मैक्सिमम जैसे भाई बोलन ना एगो कोस्टिंग विदा कर लेन जा सब दवाई तो अपोते कर ले जा जहाँ तक हमने के लुपिताल की दवाई भी तेंदर विदा कर ले जा जे में अपोते कर सकें जा करे लेकिन हमने के जितना दवाई जो फार्मासी में कही ले जा खरीदी ले जा तो वहाँ पर ही हमने के एगो कोस्टिंग जो अपोताते हैं जैसे भाई बोलन ना कोस्टिंग विदा करिए जा तब हमने को कैलकुलेट करके दवाई जो महंगा बा तो रिग्रेसिव मौका पर अप्लाई कर ले जा यानी कि कमती प्रॉफिट रही और जिनमें सकब जा कीने खरीदारी सकब जा कीने बस वास्तव में जो लोपिता बेबी मिला था दवाई और तो हर जगह तो पैसा बापर ला सौते सब कुछ देखे ले जा हमने ला सौते अच्छा रही तो सब कुछ सुहाई हमने के पहला कीने के सब दवाई
1: दमा कहीं कंट्रोले जैसे बोलनी आगे अफोर्डेबिलिटी और चाहे ला कंट्रोले वे कहीं हां वही बोला था जैसे वल्नरेबल जैसे बोलिए ना सब वल्नरेबल पॉपुलेशन हाउ उ लोग के पोते से कही जा सका है जी दवाई ढेर महंगा रही तो उ लोग नहीं सकें सकी ने तो का हुई तो नहीं अच्छा बात एगो इनजस्टिस जैसे बोलिए समाज में एगो इनजस्टिस हो जाए तो हवे खातिन हमने के मंत्रालय हाउ दमा कंट्रोल ही करेला जमे हमने के सब जितना कैटेगोरी आदमी बा हमने के देश में वो लोग सकियन सा हो दवाई वा कि नहीं हवे खातिन हाउ प्रिवा हाउ दमा कंट्रोल ही करेला सा हमने के मंत्रालय द्वारा
2: तो हमने के सकबा बताओ सकबा बोले कौन कौन दवाई में सब्सिडी बा
0: हाँ वास्तव में हमने के हाल ही में बजट दिन बा अभी 2026 के फेब्रुए से हमने के शुरू हो गए बा फेब्रुए से हमने के लागू बा कि तीन प्रकार के जिन कैटेगोरी जिन मला जस्ती मोरुशे हमने के खरीदारी कही ला जा वास्तव में पहला हमने के डायबिटिक के जिन मधुमेह के मला जिन बा एंटी डायबिटिक के हमने के हाइपर टेंशन के जेकर टेंशन है जस्ती सब दवाई हमने के मोरुशे के ज्यादा अफेक्टिव होला तो सब खरीदारी एक फर्स्ट मूविंग आइटम हमने के फार्मासी में हाली हाली जाला तो वो जस्ती महंगा हो जाए तो नहीं सकब साखी ने तो यही कारण हमने के तीन गो जो कार्डियोवास्कुलर भी हमने के दिल के बीमारी के जितना दवाई बा ना है सब में एगो अलावा सब्सिडी दलाल बा MOP बा हमने के क्लिक करके ओकर कॉस्टिंग दे ले जा ओकर मैक्सिमम प्रॉफिट दे ले जा लेकिन ओ में भी हमने के सब्सिडी दे ले जा
1: सरकार 50 रुपया दे ले बा हाउ हाउ है सब जितना जैसे भाई बोलन एंटी डायबिटीज तीन गो दवाई में है सब्सिडी वा दलाल बा लिट्रेट कर ले हमन सर दिखत हवन सर हां दिखत हवन सर है है सब जस्ती बिकता और है ये कुमाजा हमने के देश में डोमिनेट करेला तनी सुन हमने के जितना
0: पचास रुपया लगभग ऐसे दले से दियापस में आदल बड़ा आदमी लोग के कुछ पसी महंगा है सब और सिर्फ बगल भी एगो पैसो भी मिलेला जैमे सेकेंड जा कुछ अपन सेकेंड जा खरीदारी करे ऐसे सोच विचार करके जब मौके सेवेंस कही ला जाना तो वहाँ पर जाके बोलनी जाके सब जितना दवाई बा ज्यादा बेचाओ बा मोशे हमने के ग्राहक ज्यादा किनी लन जा तो सब जितना तीन कैटेगोरी जो दवाई खरीदे ला जाना हमे सिप सिप दलाल बा
1: और जैसे भाई बोलन काहे खातिर है सब कंट्रोले होला जब हमने के ग्राहक लोग के क्षमता सकियन से
2: हाँ, कंज्यूम बढ़े
1: और अभी एक्सेसिबल रही है सब दवाई से हवे खातिर नहीं जैसे भाई बोलन सब जितना एम्पोते होला सब सब के सब में
2: सब दवाई जो
1: सब्सिडी नहीं है बाकी MOP बा सब्सिडी वा है जितना तीन गो दवाई वा बोलनी हाउ में बा ऊ में SP और MOP वो बा हवे खातिर है दमा तनी सुन कमती हो गल बा
0: लेकिन अंतर करे के चाहिए डिफरेंस बा दवाई में और सप्लीमेंट में सुप्लीमेंट में कोई कुछ अलावा के लिए ले जाओ विटामिन कुछ
1: हाँ, जैसे विटामिन
0: बा हाउ सब में खाली MOP वा हाउ सब्सिडी वा नहीं है लेकिन हमने की दवाई जितना मेन दवाई बा ऊ में जस्ती हमने की लागू कर ले जा लौफाज ले जा
1: और जैसे भाई बोलन थोड़ा सुन हम रिग्रेसिव मार्कअप पर मैं बतिया ए रिग्रेसिव मार्कअप पर जैसे भाई बोलन ऊ जितना ही दवाई महंगा रही मान लो 100,000 की दवाई कब होला है बा हमने की देश में 100,000 की दवाई और हमने मान लो सिपा मजिनवा कैंस पूछा तो ढेर हो जाला जब हो कहें पूछा वहाँ प्रोफ्यू डाल तो हमने के मंत्रालय क्या कहला एगो रिग्रेसिव मार्कअप डाल दे वेला कमती जैसे प्रोफ्यू कमती कर दे वेला तो हवे खातिन जितना ही जितना दवाई वहाँ महंगा रही उतना कमती ओकर प्रोफ्यू रही जब मैं सकिय जब मैं ग्राहक लोग सकियन सकिने
2: अच्छा ये अगर आयुर्वेद दवाई देख लिया जाए ई में भी ऐसा स्थिति कंट्रोल ले होला आयुर्वेदिक
1: थोड़ा बहुत कंट्रोले हो।

0: ला बाकी सब नहीं काहे खातिन उ सब के जितना इंग्रेडिएंट बा उ सब मिले ला ला नेचर में तो होवे खातिन उतना सकेला
1: लेकिन जे एपोते करत हो जा तो कर बराबर एमओपी वा तब बा हां लेकिन सिपसी दो में देजा तक सिन सस्ता वे है कंपेयर हम निके दो सर जन
0: प्रिपेयर हो ला लेबोरेटरी वा
1: में सर भाव बा सकल जाय जाय हो बगल की दवाई सब जाकी ने खरीदारी कर अपन हिसाब से देखे के चाहिए जिन दवाई तो संगे जाता खरीद जिमे तो ला सांते जिमन रहे
0: और ये चीज बोला दवाई ले बात नॉर्मल अपन डॉक्टर कंसल्ट करके लिया जा और ये अपन जैसे एक चीज बोला दवाई प्लीजा करीते के बा मान लो कपार दुखाता प्लीजा करीते के दवाई बा देखिए जो तुहर पोस सूट करेला और ये एंग्रीजों वा मोरलेस सब पारी हुआ मिम दवाई ने
2: पियरन सा उलो पे जुन जाया
0: हवे खातिन हम एक डॉक्टर के देख के एडवाइस लेके तब अपन जितना दवाई बा लिया जा
2: तो हमार देखे में जब आप तीनों बलत हुआ मंत्रालय देने से तो ई महंगाई के दौर से ई सब मतलब मंत्रालय की ओर से ई कदम उठावल गल बा
0: हाँ जैसे बोलनी सर मौका और ही हमने के प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में और ही पैसा मिलल बा है बिजेवा में
2: अच्छा
0: हाँ अभी मंत्रालय हाल ही मिलल बा अभी मंत्रालय हमने के प्राइस फिक्सिंग यूनिट जो है गो यूनिट और ही काम करत हवन और ही हमने मार्केट सर्वेन्स करत हैं सर हमने को सर्वे करत हैं सर कौन कौन लॉजिक में और ही सकब सर सिपसिडवा डाले उब और ही दाम घटा दे के जब और ही दाम घट जाए तो हवे खातिर हमने के अभी अभी हाउ योजनावा चलता है एगो एगो एफ ओ माशो खोज जाता है सर हमने जाता है सर तेरे में सब जितना दाम बा पी एफ यू के देव था सर कहाँ कहाँ सकियन सर हाउ दमवा घटाई
2: आप ही लोग मतलब ऑफिसर जाकर के देख
1: हाँ, फार्मेसी के विशेष करके जैसे सुपरमार्केट जाली जाके करे वे कहते हैं बराबर फार्मेसी के भी जाला से चेक करे उ दमवा में कैसे चेक के कहला जा एगो दमवा फीसे रहला उ में वास्तव में इतमी के लालवा कानून है हर एक लॉजिक जन बिक्री होता बेचा होता ओकर दाम डाले के चाहिए एस डाल और हो दमवा फार्मेसी वा लोग नहीं डालन जा फार्मेसी वाला उ लोग जिन्हें पोताते है वह हो भी उ लोग के चिकित्सा डाल दे बलन जा कोई रिये करके डाल दियो दूसर दाम
2: नहीं
1: इस सोच विचार के ग्राहक लोग ही बोले सलाह दे अब जा अब जब देवत देखते हैं जब दवाई हो मैं रिये हुई नहीं हुई के चाहिए जो दाम चिकित्सा में वो ए पोताते हुए दलाल दिले वन जब दम कैसे कितना कॉस्टिंग देनी सर हो भी में दलाल बा देखे के चाहिए नहीं मन से और जहाँ तक हमने के दमवा में जो ना हमने के हई फार्मेसी में हई दमवा बा हो फार्मेसी में हो दमवा हो जाला कोई हमने के सब कॉम्प्लेट मिलल बा लेकिन ऐसे का होला वो लोग हमने के बैच नंबर देखी ला जाऊ में एपोताते जोन बाद जोन महीना में एपोते कर ले हो समय के जोन कितना फैक्टर देखल जाला कितना कॉस्टिंग हेर फेर हो जाला तब वही कहती हमने जाके चेके कही ला जा हमने के बा हमने के सब हमने के जाकर के चेके
2: कर सब और बचवा जब मिलल ओकर हिसाब से होवे
1: तो हो
0: जैसे जैसे भाई बोलन मान ल आज के दौर पर एगो एम्पोटा सो एगो कंसाइनमेंट आलबा तो ओकर दाम हो कस्टिंग करके 100 रुपया मैम मिक्सिंग एक महीना के बाद आलबा ओ दुलो तनिसुन मोते हो गल तब ओकर कस्टिंग मान ल 100 हो गल तो हाउ में चाहे ला सकब बजा हई फार्मेसी वा में 100 रुपये किने हाउ फार्मेसी वा में 130 रुपये किने तो चाहे ला ओकर बैच नंबर देखे के मत न हाँ कॉम्प्लेट वा बोल सुने करिए हमने लगे 100 85 4 65 00 तो हमने पूछब सर बैच नंबर वा ले लिया तो हमने सकब सर हाउ बैच नंबर वा के हिसाब से पी एफ यू से चेके करे न तो सीधे सकब पी एफ यू के सुने करे वो पूछे हई बैच नंबर वा के कौन कौन दाम है हाउ बैच नंबर वा के कौन दाम है सकब तो जब मैं अपन सब जितना दूध बा सब क्लियर हो जाए
2: और हाइपरटेंशन के जो दवाई वा जहाँ सब्सिडी दल ले बा जो औषधि जो प्राइस बा और होवे में देख ली एगो दूसर टिकट बा कि
0: जब मैं सब कंपेयर करे जब मैं सब
1: राहत पहुंचावे सकब जा खरीदारी करे हमने के सरकार प्रयत्न
2: करता जो दवाई में खरीदारी के दौरान मिलेला कैसे उपभोक्ता हमने के ग्राहक लोगन के मदद पहुंचावे
0: जैसे बोलनी अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा चीज है हमने के मंत्रालय है सब दमवा नहीं कंट्रोल करत एफ्लाशन हो जात में और दवाई के दाम में ढेर ढेर दवाई महंगा बेचात और हमने के ग्राहक लोग के एक्सेसिव नहीं रहत तो हवे खातिन

0: कि ने फिर से रेफे हो जब से रास्ता होते फजी के उठले पीले सांस के रात के फजी के उठले फिर से जाते हो काम करे यानी कि इकोनॉमी चलती रही लासौते है पोता हुई काटिन सरकार और सबसे सीधा डाला था जिनमें ग्राहक लोग के अपन लासौते अच्छा से रही और काम करिए जा प्रगति हो हमने के सरकार
1: हाँ, और ये एगो चीज आज दे कर हमने के देश के सबसे जितना बड़ा एसेट्स कौन कुछ है हमने के ह्यूमन रिसोर्स हमने के ह्यूमन रिसोर्स जे हमने के देश में जितना हमने के पॉपुलेशन है जो मलद मलद में रही है तो हमने के इकोनॉमी जैसे भाई बोला
0: नहीं
1: बोली एफिशिएंसी इफेक्टिव इफेक्टिवनेस वहाँ नहीं रही हवे खातिन दवाई एगो आवश्यक जैसे बोली ला सा इसेंशियल कमोडिटी है
2: तो प्रिय श्रोताओं इस विषय पर आप लोगों के पास कोई विचार हो या फिर कोई प्रश्न हो बेझिझक 402-808-85 पर जरूर हमें फोन कर सकते हैं।
3: हाय

0: इस कार्यक्रम में आप सबको के दोबारा स्वागत कर रहे हैं। और आज हमने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मतलब कीमत पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ श्री लालमन जी हैं और श्री लाल बिहारी जी हैं। तो जैसे हमने ये दवाई पर बताया थे तो गवर्नमेंट सरकार द्वारा हॉस्पिटल में सब मेडिसिन सही प्राइस पर मिलेला इसे कैसे कोट होले करेला
1: जिन दवाई लुपिताल में मिलेला का मिसला संते

0: का करेलन वो लोग तेंडा लॉन्ग से करेलन सा तेंडा लॉन्ग से करेलन और जो चार हमने के जो एयरपोर्ट आते हैं हवन सा वो लोग हव तेंडा वहाँ भर देवेलन सा तो निचे लासों थे कि विदा कर देवन सा और जैसे बोली लासा जो सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड रही तो ओकरे असाइन हो जाए ओकरे असाइन हो जाए तो वो लोग एयरपोर्ट करके लोबीताल में विदा कर दियन सा।
1: अच्छा हाँ। और फार्मेसी देने से ई जैसे से ई कम हुआ होला से लोग जब चला
0: जैसे हाँ जैसे हमने के हमने के देश में फार्मास्यूटिकल बोर्ड है तो उन लोग के एक महत्वपूर्ण रोल है हमने के समाज में हम दवाई कंट्रोल करे कि क्वालिटी के और जे जे कुमाजा कुछ रही तो उन लोग सकियन सा कौन से ये करे तो हवे खातिर फार्मास्यूटिकल बोर्ड हमने के देश में और जितना दवाई बा उन लोग कंट्रोल करे
2: यानी कि जितने एयरपोर्ट आते हैं उन लोग एयरपोर्ट कह लें जा और रिटेल में आकर के फार्मेसी में बेचा जाला हमने की दवाई एयरपोर्ट आती है लोग अपन कॉस्टिंग विदा करियन जा और दमवा दाल देवलन जा तब आकर के रिटेल में ग्राहक लोग सब जा खरीदारी करे फार्मेसी लगे आई ला जा तो हमने की खरीदारी होला चाहे नहीं जला जा एयरपोर्ट आती है लोग ओगो बेचियन जा तो हमने की जो दमवा जो बा हमने की सरकार जो बा हाउ एमओपी जैसे भाई बोलन हमने की रिटेल प्राइस वा दई ला जा कितना बेचे के चाहे ग्राहक से प्रोफिवा सब काल के लिए करके नियमन से भाव से तब देखी ला जा फार्मेसी लोग के ई हमने के बा कानून है एकर से ज्यादा नहीं बेचे के चाहिए जितना मॉकअप बा जितना दिखाल बा पतवा में डिब्बा में और प्राइस तक जितना बा एकर से ज्यादा नहीं बेचा जाला कोई भी ऐसे होता हमने के सुने करे के बोले के चाहिए एन विच सैंक में 4625 में कॉन्टैक्ट करे के चाहिए तो कोई
1: शिकायत मिला ले से
2: मिले ला हमने के
1: जैसे को उदाहरण दे बने हुए तालियावा
0: बच नंबर वा में कबो कबो एगो ग्राहक चल गल हाई फार्मेसी वा में हाई दाम वा में मिलल बा हो कमती दाम है जा तो ऐसे ही ऐसे एगो हमने के शिकायत मिले ला
2: कानून ने आप कहीं नहीं सोचे के चाहे नीमन से देखल जाए ओकर एक्चुअल प्राइस कितना बा ओकर सब्सिड के बिना कितना रहल सब दमवा चेके करके तब आप विकास होकर ले
0: सकते हैं जो दू गो दमवा रहल ओकर फंक्शन हई रहल जमे हमने के फैसिलिटी हो जाए जे दिखे के हो 50 रुपया दल्ले बा कि नहीं
2: लेकिन महंगा तो बा अभी तो माने के चाहे महंगाई के जमाना बा हो हमने के हाथ में नहीं है ना उसके सब चीज तय पोते कही ला जा तो दवाई भी भवे में पड़ जाला और फिर ताशो होता है पोताशो होला लेकिन सरकार अपन जैसे रिग्रेसिव मौका पर जब दली से ना तो बुझा जाला कि जितना महंगा के दवाई ओकर प्रॉफिट कमती है सकब जा कीने हमने के ला समझते के सकब जा भाव से अपन जीवन से कब्जा जिए
0: और हाँ, हाँ, हाँ, जैसे मॉकअप वहाँ बोलने कहे हमने के ग्राहक लोग के वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे के जैसे फाइनेंशियल कैसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन से कुछ मानते हैं जैसे जी एयरपोर्ट जब एयरपोर्ट ही होला हाउ से एगो ओकर दाम महंगा रहेला जब हमने के एयरपोर्ट आते हैं जो दाम खोजन से डाली नहीं सकियन से डाली नहीं सकियन से डाली बस की नहीं बोली ला लोग मालूम नहीं तुम्हें नहीं ऐसे नहीं।

0: अपन जीवन से कब्जा जिए।
1: और ये हाँ जैसे मॉकअप वहाँ बोलने कहे हमने के ग्राहक लोग के वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे के जैसे फाइनेंशियल कैसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन से कुछ मानते हैं जैसे जी एयरपोर्ट जब एयरपोर्ट ही होला हाउ से एगो ओकर दाम महंगा रहेला जब हमने के एयरपोर्ट आते हैं जो दाम खुजन से डाली नहीं सकियन से डाली नहीं सकियन से डाली बस की नहीं बोली लाओ लोग मालूम नहीं तू भी नहीं
2: नहीं इफेक्टिव होते हैं बराबर बराबर
0: लेकिन हमने के आधार पर कोई के एलर्जिक है दवाई से और से है से तो जेनेरिक वा सब से भी करे कोई के परेला ब्रांड देखने की तो हमने के ला संते पर निर्भर है लेकिन बा अभी ले हमने के मौसम में बा सब दवाई अपन चयन कर अपन हिसाब से भाव से लेकिन सब में हमने सरकार अपन एमओपी द ले बा और यदि है सब तीनों का दुगुरी में रही कर सैकड़ों रुपये के सब्सिडी डाला है ऐसे बा
1: सब एफोमाशो खोज जाए के आगे बस की काहे एफोमाशो हुए तुहर ढाल बनी तुहरे पोती से करी जमे हौ सिपा मान लो जैसे बोलनी सिपा एगो दुलिया हो गल बा प्लीज कैटेगोरी दवाई बा दुलिया की तो अपन अपन जाके देखिए जी एंग्रेज वहाँ सब जैसे ब्रांड ब्रांड के नॉर्मल सब एंग्रेज वहाँ पा गई बा ब्रांड खोजबा तो नॉर्मल
0: महंगा
1: हो जब महंगा पे करबा तो हो खातिन हौ एफोमाशो वहाँ खोजिय
2: जरूरी है और जस्ती अपन डुक्टिया से ही सलाह सको बिना ऐसे नहीं जाकर के कोनो चीज लेवे की और अगर आदत
1: इसे तो दवाई के विचार पर नहीं सक बजा ऐसी निक जाके खरीदारी करी अपन डुक्टिया से सलाह मशवरा कर तब जाके
0: सब कोई के शरीर बराबर नहीं रहेला कोई की दवाई हो में नहीं जाई
2: हमनी
0: के हो जाला कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाला साइड इफेक्ट हो जाला वे कहते हैं सोच विचार करके अपन डॉक्टर के सलाह मशवरा करके तब अपन दवाई के खरीद।
2: अच्छा तो नहीं हमें हट के अभी हाल ही बजट 2026-2027 हाल ही में हो रहा तो बढ़ती हुई महंगाई यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग से निपटने के लिए बजट में कौन सी नई रणनीति लाई गई कदम लाई गई है
1: अभी दिख बजा और ही पैसा मिलल बा हमनी के प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में हैं और ही पैसा मिलल बा हमनी लगभग दे मिलियो मिलल बा हमनी के हौ दे मिलियो से हमनी अभी काम करत हैं सा योजना बनावत हैं सा कौन कौन फौजी में सकब सा और ही हौ सब्सिडी डाली अभी हाल ही दिख बजा सकब सा हौ तो में डाले कौन मुतों में डाले और काम करत हैं सा कौन कौन फौजी में सकब से डाले हौ सब्सिडी जमे सकब से और दमवा घटाए और हमने के ग्राहक लोग के क्षमता बढ़ावे
0: और अभी अभी हाँ। जो हाल ही में अभी लागू नहीं होल बा हमने एस टी से भी थोड़ा बहुत ज्यादा अपने पोटाशों पर बढ़ाई जितना लॉजिक जितना बा आज एक आध लॉजिक उम्मीद डाली पोटाशों जस्ती करी जिनमें कॉम्पिटिशन हो जाए मंडी में यानी कि पोताते है या पोते करता है हमने कैसे से भी पोते करी तब दमुआ में तहसीन उतराव चढ़ाव हो जाए तहसीन पैसे भी हो जाए तब हम लिख सकब जाए और प्रोफिटी करके खरीदारी सकब
1: और हमने के ग्राहकों के लाभ हुई जब जैसे जब जब बल्क इम्पोर्ट करबा तो उकर दाम घट जाला
0: हाँ जैसे आरे को कोई बा पैरेलल इम्पोर्ट जैसे हम इम्पोर्टेशन करते हैं ना आरे कोई सकीला इम्पोर्टेशन करे हवे चीज में दमुआ में
1: हाउ कॉम्पिटिटिवनेस हुआ जब रही हमने के मंडी में तो वो और ही हमने के दाम घटा दी बस कि का है कॉम्पिटिशन रही ना वो लोग
2: खाली अलिमेंटेड की चीज में या फिर दवाइयों में सकीला
1: दवाई में काम करत हवन सा काम करत हवन सा जे हाउ पागल है इम्पोर्ट हुआ जैसे भाई बोलन अभी अभी नया अल्बा में आई अभी काजनी कब में आई
2: लेकिन सर्वे से पता चल जाएगा
0: काम फिर काम पीछे तब एक सब से को लागू करे लेकिन आवता देर चीज सो विचार होता भी कमिटी बैठाओ थे जा जे में राहत राहत पहुंचावे के ग्राहक लोग
1: अभी अभी हाल ही हाल ही हमने के मंत्री बोलन कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल वो आवता वो हाउ में बहुत बदलाव आवी बहुत बदलाव आई हमने के
2: कैसे सकेला कानून
1: जैसे हमने के जैसे एगो एगो कानून है हमने के सब कानून कैसे फावोरिजे नहीं बोला मैं वहाँ जा हमने के ग्राहक लोग के जस्ती राहत पहुँचाई
2: ओके
1: और जस्ती रहत और हमने के ई कॉमर्स हमने के ऑनलाइन सब सब सब सब रही हो
0: एगो भाव से जे में ढेर लालू अभी हमने के उतना ने सकते जा लागू करी जैसे जाय ला जाय स्पेक्शन करी तो देखी ला जा तो हमने बिता के ले जा कौन सी कमी बा कौन

0: ça comme j'ai amélioré carré d'amener que la loi Burton Bynum j'ai ou aina te dégbe gestion mais que ça comme j'ai protection carré mais que grave que c'est ça ça comme j'ai enforce carré mais que la loi j'ai d'abord
1: तो श्रोताओं इस विषय पर कोई सवाल हो 4028085 पर आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद हम लोग तनी मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर चर्चा करेंगे फिलहाल यूसुफ एक गीत आप लोगों के लिए चला रही है

0: अब तनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर तनी चर्चा करब जा। अच्छा मिनिस्टर और कानून जोन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान है एगो खरीदारी के दौरान उपभोक्ता लोगन के कैसे मदद
1: मिलेगा। हाँ हमने लगे अभी देख बजा हमने के जितना घरेलू सामान बा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक फोन पहुँची करेला जैसे फ्रिजिडेयर बा टेलीविजन बा रेडियो बा फूर बा सब आजकल हो हमने के घर में चाहेला काहे फैसिलिटी देवेला हमने के जीवन में बाकी हो सब जब रहेला तो कंट्रोल वो चाहेला हो सब में तो हवे खातिर हमने के मंत्रालय में एगो एगो खरीदारी कर बजा तो है सब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के सामान तो एगो एगो एगो कानून बा इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक अप्लायंसेस रेगुलेशन उमें का है जब

0: एगो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक किनबा जा नहीं बोली ला हाँ एगो एगो प्रोसेस किने के चाहे ला दाम देखे के और चाहे ला ब्रांड देखे के ना और जितना चीज है जितना इन्फॉर्मेशन किने के आगे चाहे ला देख ले के और किन दे
1: बता
0: हरदम बोली ला लेवे के आगे चाहे ला चेकी करे के नहीं चेकी कर बा और बाद में देखुविया कर बा कि कुछ नहीं अच्छा बा तो हमने के तनिस मुश्किल हो जाला है सब मैं इंटरवीन करे के बाकी करब सा देखब सा बेगो भाव पर कैसे कानून सकब सा अप्लीके करे के तोहरा मदद पहुँचाई के और ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कुछ बोले लन मान ला एगो सामान एगो एग्जाम्पल फ्रिजीडियर के एगो रेफ्रिजरेटर के अनला गारंटी में बा सब चेक कर दिला सब निमन बा थोड़ा एक आध दिन में एगो प्रॉब्लम हो गल और शिकायत कर दिला हम नहीं लगे और हम नहीं जो पहला केस हो सवाल करब से तुहर से पूछ जे गारंटी में बा कि नहीं और किने के आगे चेक कर ला कि नहीं बस कि मत ना रिसीव इन गुड कंडीशन में सीए कर दिला और बाद में लौकता कि सिपा काबूसी हो गल बा अब सिपा कोनो कोनो दिक्कत हो गल बा तो नहीं अच्छा रही हवे खातिर हम हरदम बोली ला लेवे के आगे सब चेक कर दिया और हाँ हमने के सवाल जो है खराब हो गल बा फ्रिज देवा और शिकायत करत हो हमने लगे कि खराब हो गल बा तो देखा ऐसे ऐसे अब नहीं लेव ऐसे नहीं है एगो प्रोसेस है कानून में एगो एगो सेक्शन है तो वो देख पूछब सा जे कंप्लेंट तो कर दिल अब मत ना फ्रिज दे तो हर घर में बा अब कंप्लेन करता हुआ कि हाउ सब लागू कुछ नहीं करता मगा से कुछ नहीं करता नहीं ऐसे नहीं है हाउ कंप्लेन कर दिया आगे वो लोग के 10 दिन बा हाउ फ्रिज देवा रिपारे करे के हाउ 10 दिन हुआ में जो नहीं सक्षम से रिपारे करे तो तोहरा 11वें जू में तोहरा चाहे ला एगो कॉम्प्लासे मिले के तब वो लोग के और 3 महीना है बनाए के जो नहीं सक्षम से तो दूसर सक्षम सा एगो जैसे बोली ला सक एगो क्रेडिट नोट दे तो सक बस एगो दूसर की नहीं तो ऊ में जे 10 दिन हुआ में शिकायत कर बा तो कानून है जे मान ला 4 दिन में हमने लगे को शिकायत कर बा तो तोहरा एक्सप्लिके करब सा जे 10 दिन के बाद नहीं कुछ हो तो 11वां दिन में कॉम्प्लासी मिली हाँ और जे गारंटी में रही कुछ हो नहीं समझे करत हवन जे लाती जिया करत हवन सर सप्लायर तो हमने जब से कानून अपील के एनफोर्स करे
2: हाँ यानी कि पहले हमने के हम जैसे भाई बहन पहला रेसी रखे के चाहिए मन से और पूछे के चाहिए मैं गारंटी बा कि नहीं गारंटी बा और हमने के जन लॉजिक बा जन खरीदारी करने से और जो काम करे के ऑनलाइन से हम कम होता कि नहीं मैचनेबल गुड्स बा कि नहीं पहला जैसे कि नहीं 2-3 दिन में खराब हो गल बा तो पोजुआ में तो मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट हो ही सकेला लेकिन हम नहीं लगे कॉम्प्लेक्ट कर बा अच्छा बा लेकिन पहला हो बुटीक और मगाजे वो लगे ले रहा हूँ वहाँ जाके चाहिए आगे वो शिकायत वा करी वो अपन कैसे कैसे विचार बा कर लालवा चाहिए डाले के ऊपर चाहिए चाहिए पोजुआ ले करके ना अपन देखी कैसे कैसे बा 10 दिन जैसे भाई बोलन ओके अवधि वा देवल गल बा कानून 10 दिन के बाद में कुछ नहीं करता तब
1: हमने
2: के सकब जा शिकायत कर
1: उपभोक्ता लोग के चाहिला ध्यान में रखे के कि एको खरीदल सामान की वारंटी तब शुरू होला जब डिलीवरी होला
0: गारंटी वा शुरू होला जब हो रिसीव्ड इन गुड कंडीशन जब डिलीवरी हुआ होला तो वो लोग के एक बरिस मिल जाला ना तो कोनो सकेला 2-3 बरिस वारंटी हो सप्लायरों में डिपान होला कितना कितना बरिस दी
2: हाँ। भाई जी बोलन ना खरीदारी करे से आगे काम रहेला इन्फॉर्मेशन ले ला पोजवा कौन चीज है किन मारत के है कौन चीज आर बेचे उला के और ओकर जिम्मेदारी है बोले के चाहिए कि पोजवा इतना देश साल बा है में कैसा बा इतना गारंटी देवल जाए सा और गारंटी में कौन चीज कुवे होता गारंटी
1: कौन चीज कुवे होता
0: कब सोचे के चाहिए कुछ शिकायत हाँ गल सप्ताह हम के एगो शिकायत मिलल रहल काम करे के ऊ में अब जो जो अदमिया हमने लगे शिकायत कल नो लीची जली चीज लोग गारंटी तो चाह पूछे के जैसे भाई बुलन उकर जिम्मेदारी है चाहे ला पूछे के हाँ मु लिखन फेले लिखन टेलीविजन में नहीं कुवे होला जब कुछ हो जाला नहीं कुवे होला नो ली चीज जमाली लोग गारंटी तो ऐसे नहीं है और एगो दूसर चीज जैसे एगो

0: आचिके करब लाताउँछौ जब कुछो किनबत चाहेला देखे के हौ इज इट फिटिङ योर पर्पोज फिटिङ योर पर्पोज यानी के गो फ्रिज किनब किनब और ठंडा नहीं कर था त नै अच्छा ह त चाहेला शिकायत बा कर दी ओ लोग ऑटोमेटिक सँझे कर दियन्छ हवे खातिन हौ जैसे भाई बोला
1: चाहेला टेस्टे हो जब आई तब डिलीवरी करी तो लोग टेस्ट
0: चाहेला टेस्टे करी कि जैसे ओ लोग के जिम्मेदारी ह जैसे अनियन स त घरी हौ प्रायर टू हौ सीनियर करे के रिसीव दी गुड कंडीशन चेक कर दे हौ टेलीविजन देखत भारता कि जिमाज मिलता नहीं मिलता चाहेला देखे कि फ्रिज देवा ठंडा करता कि नहीं करता चाहेला देखे कि राजो खेलता कि नहीं खेलता
1: देखे कि खरे में खुशी के मारे हो
2: खुशी के मारे हाली आगे बातों में डाल देते हैं हां बहुत जाता
0: है जाता हुआ नहीं ऐसे
2: नहीं अभी होता नहीं होता रे तब
0: हवे हवे बोली ला सा हमनी हमनी जागृति अभियान चलाए ला सा
1: रेस्पॉन्सी
0: हां अवेयरनेस कैंपेन चलाए ला सा कैसे हमनी के जिम्मेदारी बढ़ाए के हम देखे ग्राहक लोग के
2: दुआ भी है और जिम्मेदारी भी बा पूछे के चाहिए बोला आगे खरीदारी से करे से आगे ना पूछा वाच पड़ताल कर अपन रिव्यू देखे अभी तो एक एआई के जमाना बा सब सोचने मन से देखा और जब लिवरेजन वो लिवर थे जाए डिलीवरी होता तो कोई के चाहिए घरे रह के देखा मन से पोजुआ हवे कुलिया के हौ दूसर के नहीं मिला दूसर पोजी ले अब बोल नहीं है
0: बाद में तोहरा मुश्किल में नहीं हुई
1: और जो महंगाई के जमाना में कैसे मतलब चाहेला स्मार्ट खरीदारी
0: जैसे हरदम बोली ला तनी सुन विंडो शॉपिंग टेलीविजन सब मगाजे में बेचाला तनी सुन जाके देख परख एनालिस कर रिव्यू देख तब जाके अपन खरीदारी करी और जैसे जैसे हरदम बोली ला मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन बिल्ड स्मार्ट कंज्यूमर्स जितना इन्फॉर्मेशन खोजब उतना तो हर ढाल बनी बाद में मुश्किल में नहीं पड़ब होगा
1: अच्छा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैसे उपभोक्ता के लोग के मदद पहुँचावेला
0: कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे बोलनी अभी ढेर अधिकार हो गल बा जैसे आठ प्रकार के अधिकार बा जैसे राइट फॉर इन्फॉर्मेशन राइट टू चूज राइट टू रिड्रेस और बा हौ हमनी के कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कानून बा ओके एनफोर्समेंट करके जैसे एगो एग्जाम्पल एगो राइट टू रिड्रेस एगो एगो सामान खरीद ला टूट गल बा वो लोग की दुआ है सप्लायर के चाहेला वो लोग की दुआ है सामान वा के बनाए के एगो जैसे बोलनी टेलीविजन फ्रिज दे राजो कोनो फो इलेक्ट्रिक ओकर अधिकार है चाहेला बनाए के और एक कानून वो बा जैसे वारंटी रेगुलेशन बा अभी जैसे जिसकी तीक रहा था ऐसा इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक अप्लायंसेस वो लोग के अधिकार है ये सब कानून लागू करके जन जन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बा हाउ कानून वा लागू करके हाउ अधिकारों के प्रोटेजी करी ला सा सुरक्षा करी ला सा जब में हमने के ग्राहक लोग सकें सा एगो एगो राहत पहुँचाए और वो लोग वो तनी सुन लोग कैसे बोली हाँ सुन राहत
2: हवे कानून में कुछ प्रोटेक्शन आप में हमने के दाम बोला गल पाया स्पेसिफिकली कल निमन से कि हमने के दाम डाले के चाहिए कोई चीज़ बेचाव होता ना हमने के ट्रेडर लोग बेचा था मजा व्यापारी लोग अपन ए एस डाले के चाहिए मोटो अब हाल ही हमने के पोमे जुले से बाद में से कब जाएगा प्रोग्राम करी में कि हमने के भाव लिखे के जो सुन सौदे होता
0: हो गल बा हाँ
2: जो सब्सिडाइज प्राइस के एस पी डाले के चाहिए जो मैक्सिमम रिटेलर के मदद प्राइस बाय ओकर एम ओ पी डाला तब ओकर ए एस ओकर मोटो डाले के चाहिए बाद में सकब जाएगा एगो प्रोग्राम सकब जा करे बस आवत को मैं जुलेट से मुको लागू होता कि भाव से जनता लोग के चाहिए जाने के चाहिए ई में सब्सिड बा ई में मॉकअप है और ई में दम बराबर बा हमने के
0: और कोनो कोनो लॉजिक वो कोनो लॉजिक वो ओ में सब्सिड वो बा और एम ओ पी बा
1: दोनों
0: हां दोनों बा जैसे एगो एग्जांपल हुआ दूध की हां दूध की जैसे कुशवो बा ओकरो में एम ओ पी बा ओकरो में एस पी बा एस पी यानी के सब्सिडाइज प्राइस ओकरों में तो हाउ सब जैसे भाई बोलने को दूसर प्रोग्राम में जिसकी ते करब सब कैसे
2: कानून में दाम परम आवश्यकता भाई होई के चाहिए और दमो हमने के
0: कानून जैसे बोलनी कानून आवता जे है जब है सब चीज नहीं डल बजा तो एगो कोंटा मोशन हो जाए तो होवे खातिन एगो दूसर प्रोग्राम करब सब हाउ जैसे बोलब सब हमने के जितना हमने के कोमिया सब जितना के हमने के भाई

0: महीना हुआ
1: जी देसा मंत्री मंत्रालय दिनेश बतावल गरवा की कौन कौन जैसे पास अकाउंट पहुंच हुई आगे भी बतावल गरवा की कौन ची लेकिन अभी लागू नहीं होल बा
0: हाँ
1: अभी सब्सिडी रही
0: अभी और आवता अभी अभी पैसा मिलल बहाले अभी जे में हमने के मंत्रालय के तो अभी जैसे अभी सर्वियंस करत है
1: मतलब ग्राहक लोग के और राहत मिली
2: और राहत मिली बराबर मिली किने के
0: किने के
2: और में लिखावल जाए इनमें सब्सिडी बा है कि दमा कितना होगल बा ओकर मौकअप सब बा है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जैसे बोल है सब कानून बा हमने के तीन प्रकार के दमा तो मोगिस में बा एगो फिक्स भी दाम है एक लालवा में के आधार पर जैसे आलू प्याज हमने फिक्स है बबन
0: गार्ड
2: फिक्स है तो सरकार हमने के सब प्रयत्न कर ले भाई सब प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जिसमें राहत पहुंचावे के
0: और हमने के मंत्रालय के ऑब्जेक्टिव का है हमने के ग्राहक लोग के क्षमता बढ़ाए के बस की मानी ला अभी तनी सुन महंगाई के जमाना हो गल बा विश्व भर में
1: महंगाई
0: के जमाना चलाल बा तो हवे खातिर हमने के मंत्रालय
1: पूरी कोशिश
0: धीर योजना बनावत हवन जब हमने के ग्राहक लोग के क्षमता बढ़ाए के और वो लोग के राहत वो पहुंचाए और जितना लॉजिक बा वो लोग के एक्सेसिव हो
1: अच्छा हमारे ग्राहक लोग के अंत में कौन चीज बोल बा कौन संदेश दे बा कौन चीज सब बोले
2: ये संदेश में हमने के स्मार्ट जैसे बोल रहे स्मार्ट बाइंग करे के चाहिए नहीं हमने के रिव्यू देखा तुलना देखा दाम की एक के प्लाजा के नहीं किना सब लोग घूम लेते हैं सुन घूम लो आगे कितना प्राइस के यानी कि दाम की तुलना करे के चाहिए और खाली सस्ता नहीं देखा क्वालिटी भी देखे के चाहिए तब खरीदारी कर हमने के फिजूल खर्चा नहीं करो भाव से अपन पैसा हिसाब से दे पहुँच करे के चाहिए
1: हर बार प्रोग्राम करते हैं इसी आशा के साथ कि हमारे जो ग्राहक हैं उपभोक्ता वो लोग लाभ उठाएं इस प्रोग्राम से और जितनी जानकारी आप लोग दे रहे हैं इससे ज़रूर मतलब इस सलाह को लेकर के अपना कुछ बोल बा अंत में भाई जी
0: जी हाँ हमने के ग्राहक लोग की जैसे हरदम बोला था प्रोग्राम में जे अपन खुद के प्रोटेक्शन चाहे ना करे के अपन जितना इन्फॉर्मेशन लिया जमे सक बजा कोनो मुश्किल में नहीं पड़े
1: बिल्कुल
0: हाँ
2: और जैसे आज के प्रोग्राम में दवाई की है दवाई की देखा नहीं मन से कुछ और ही सलाम और शौरा बा तब निकल के संपर्क करी सर
0: और कोनो कोनो चीज रही हम नहीं लगी सक बजा सुनने करे एन विच साइन 462500
1: हॉटलाइन 1-8-5 और अगर
0: 4602-2500
2: व्हाट्सएप नंबर भी है 5942-8888
1: ओके
0: सब बजा सुने करे और ये कुछ और ही पूछे के सलाह मशवरा चाहे ला तब पूछा बिन झिझक सुने कर हमने हाई सा हो तोहरा इकलैसी करेंगे
1: बिल्कुल हमारे जो ऑफिसर्स हैं बिल्कुल तैयार हैं आप लोगों की शिकायत दर्ज करने में जो भी हो वो आप लोग बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं तो आज की चर्चा से हमें ये समझ आता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की कीमत सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि सीधे तौर पर हर घर की सेहत और बजट से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है तो आशा करते हैं हमारे इस प्रोग्राम से आप श्रोताओं ने अवश्य लाभ हुआ होगा और हमारे दो अतिथि यानी कि श्री विश्वास सिंह लालमन जी और श्री सूरज लाल बिहारी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे साथ में टेक्निक पर यूसुफ सुब्राची उरुसा और जिनेश जिसके मदद से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाया गया आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप श्रोता जो हमारे साथ आप लोगों ने दिया बहुत बहुत धन्यवाद फिर नमस्कार और आदाब।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम याचना के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको याचना।
1: नमस्कार या सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 2300 से ज़्यादा परिवार मॉरिशस के सोशल रजिस्टर में पंजीकृत होने वाले हैं और उन्हें नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से सहायता मिलेगी। पहली जुलाई से इस के लिए योग्यता की सीमा बढ़ाई जा रही है। बजट 2026-2027 में इसका ऐलान किया गया। इसका उद्देश्य है ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करना। अभी के लिए सोशल रजिस्टर में 5200 परिवार पंजीकृत हैं। अफ्रीकी इलाके में फिनटेक की दुनिया में मॉरिशस की पहचान मजबूत करना और इसके लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को और आसान बनाना, ये मॉरिशस नेशनल फिनटेक स्ट्रेटजी 2026-2030 के मकसदों में शामिल है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका की टेक्निक की सहायता से ये दस्तावेज बनाई गई है। आज इसकी औपचारिक लॉन्चिंग की गई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप सी में आज सुबह मोरक्को का सामना हुआ आईटी के साथ। स्कोर रहा 4-2। ब्राजील की टीम ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया, जबकि ग्रुप ए में साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया के बीच स्कोर रहा 1-0। चेकिया और मेक्सिको के बीच का मैच भी काफ़ी रोमांचक रहा, मेक्सिको की जीत 3-0 के स्कोर पर। अभी के लिए 9 अंकों के साथ ग्रुप ए में मेक्सिको सबसे आगे हैं, जबकि ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड और ग्रुप सी में ब्राजील 7 अंकों के साथ। और विदेश में वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक के बाद एक आए भूकंप के तेज झटकों के कारण भारी तबाही मच गई है। कम से कम 32 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मलबों के तले दबे लोगों की तलाश जारी है। कई इमारतें ढह गई। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 की मापी गई। वहां आपात स्थिति की घोषणा की गई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Continuous music.

94.6 98.2 megahertz पर ये है RM Free Radio मनोरंजन. Ladies and gentlemen, guys and girls, dear gents, स्वीकार कीजिए और जय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार. Yes, this is your evening show. दिल से मिले दिल. शाम के 4:04 हो रहे हैं. आज गुरुवार की शाम, गुरुवार 25 जून 2026. एक घंटे के लिए हम आपको ले चलेंगे बस प्यार मोहब्बत की दुनिया में, जहां बस प्यार की बातें हो रही है, मोहब्बत की बातें हो रही है. और ये प्यार ना ये प्यार जब इंसान को हो जाता है ना, तो इंसान दीवाना बन जाता है, बेगाना बन जाता है, मस्ताना हो जाता है. आय हाय, प्यार का ये जो एहसास है, प्यार का, प्यार की जो चुभन है, क्या बताएं इस प्यार के बारे में. और अगर आपको भी प्यार हुआ है तो इस गीत को अच्छी तरह से सुनिएगा. बहुत सारे एहसास है, बहुत सारे इमोशंस है इस गीत में. आखिर याग्निक और साथियों की आवाज़ों में फिल्म रंग का ये गाना, चलिए बहुत प्यार से सुनते हैं.

0: continuous music. RM3.
1: दिल से मिले दिल। जहाँ चंद प्यारे प्यारे रोमांटिक गीत प्यार करने वालों के नाम, दिल से मेरे दिल प्रोग्राम शाम के 4 से 5 बजे के बीच। और बेशक किसी के प्यार में ये दिल मचल रहा है, ये दिल झूम रहा है। और ये प्यार ही ऐसी चीज़ है, जब इंसान प्यार करता है तो सब कुछ भूल जाता है। उसे लगता है कि ये दुनिया बदल गई है, ये जहाँ बदल गया है, आपके प्यार में हम मचलने लगे, हम सवरने लगे। हाय, जब पहले प्यार ना हुआ था तो कुछ भी एहसास नहीं था, अब जब से प्यार हुआ है तो बस आप ही आप हमें नज़र आती है, नज़रों में, फिजाओं में, बहारों में, बस आप ही आप। आपके प्यार में हम तो पागल हुए जा रहे। ओए होए, आगे क्या होगा।

वादा वो है जो निभाया जाए, ये नहीं वादा करके मुकर जाना, ये अच्छी बात नहीं। और वादा करते हैं अगर किसी का साथ देने के लिए, जब आपने साथ फेरे लिए किसी के साथ, तो सात जन्मों तक आपको उसका साथ देना है। वो चाहे आपसे लाख झगड़ा करे, लाख आपसे शिकायत करे, पर आपने उसका हाथ थामा है, तो ये वादा जो है, इस वादा को हर हाल में निभाना है। वादा कर ले साजना, और कौन किसके साजन के साथ वादा कर रहे, चलिए हम भी सुनते हैं, आप भी सुनिएगा।

सफर हमारे अपनों के साथ एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ 2 घंटों का सुनहरा सफर इस बार मोसलमो सैतान्द्रे कम्युनिटी सेंटर में जहां बेजितोंबो कोई राची और मोसलमो सैतान्द्रे एसोसिएशन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 26 जून दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन साथ ही टिकटॉक पर फॉलो कर पाएंगे सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 26 जून को दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मोसलमो सैतान्द्रे कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ।

जहां तक सुहाना सफर स्पेशल प्रोग्राम का दिन के 12 से 2 बजे के बीच लाइव टिकटॉक पर होगा और रेडियो मनोरंजन पर भी सो जरूर सुनिएगा ये स्पेशल प्रोग्राम मौसलमों से आतंदे के लोगों के साथ एमबीसी की टीम होगी वहां पर मनोरंजन करने के लिए शाम के 4:50 हम जानते हैं कि आप इन प्यार के गीतों में डूबे जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये कौन सा चैनल है सो ये है एमबीसी का म्यूजिकल एंटरटेनिंग चैनल और इन फ्री रेडियो मनोरंजन दिल से मिले दिल रोमांटिक गीतों की महफिल है ये और अब कोई किसी के सिवा रहना नहीं चाहता कोई किसी का साथ चाहता है कोई किसी का प्यार चाहता है तुम्हारे सिवा हम जी ना पाएंगे तुम्हारे सिवा हम रह ना पाएंगे हम तो बस हमने तो अपना दिल तुम्हारे नाम कर दिया ये दिल क्या चीज़ है हमने अपनी जान तुम्हारे नाम कर दिया One of the best song of the yesteryears रोमांटिक गीतों में से बेहतरीन गीत From the movie One and Only तुम बिन तुम्हारे सिवा हम शिकायत करेंगी उदित नारायण साहब साथ में हैं अनुराग पोडवाल जी

लेडीज एंड जेंटलमैन, तुम्बिन के इस रोमांटिक गीत के बाद एक अंतिम गीत आएगा फ्रॉम द मूवी अकेले हम अकेले तुम, दिल कहता है। और दिल क्या कहता है एक बार जरूर सुनिएगा। और उस गीत के साथ ही रोमांटिक गीतों का प्रोग्राम दिल से मिले दिल यहीं पर समाप्त हो जाएगा और हमारी आपकी मुलाकात होगी अब सैटरडे मॉर्निंग को। जी हम आपसे मिलेंगे जरूर 6 बजे से 9 बजे तक इन द मॉर्निंग इन योर मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना ऑन AM2 रेडियो मॉरिशस। शाम के 4 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, करम मेहरबानी। सो इट्स प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, नमस्ते।

0: नमो नमः सर्वेभ्यः।
1: प्रिय श्रोताओ, एक बार फिर जानातु संस्कृतम्, संस्कृत को जानिए साप्ताहिक कार्यक्रम में डॉक्टर कीर्ति रामजतन और सुश्री सुरभि मोतिया की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे कार्यक्रम को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं श्रीमान संजू टकुरी। तो श्रोताओं, अब तक का हमारा कार्यक्रम आप सभी को कैसा लग रहा है, इस पर अपने विचार हमें लिखकर जरूर भेजिएगा और लिफाफे पर पता रूप में लिखिएगा, जानातु संस्कृतम, रेडियो प्रोग्राम MBC मोका। पत्र में अथवा लिफाफे के कोने में अपना नाम, पता अथवा नंबर भी लिखिएगा। आइए अब हम अपने अद्यतन सत्र का प्रारंभ करें। प्रार्थना सुनिए।
2: ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु

0: श्रोताओं, अब हम अस्ति और नास्ति का प्रयोग देखेंगे। अस्ति का अर्थ है और नास्ति का अर्थ है नहीं है। तो सुनिए, दोहराइए और आत्मसात कीजिए। चषकः अस्ति, जलम नास्ति।
1: चषकः अस्ति, जलम नास्ति। गिलास है, जल नहीं है। चषकः अस्ति, जलम नास्ति।
0: स्थालिका अस्ति, भोजनम नास्ति।

इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु से अपनी सेना की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। श्रोताओं, आइए अब हम पशुओं के नामों पर आधारित एक संस्कृत गीत का आनंद उठाएं।

0: तो श्रोताओं, आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है। प्रार्थना सुन लेते हैं।
1: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे

0: RM3 Radio.
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
0: RM3 Radio.

0: रसधारा
1: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्

0: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। राम रसधारा के सभी श्रोता भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सियाराम, जय जय हनुमान। आप सबको रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हार्दिक अभिवादन है। आज हमारे स्टूडियो में चार बहनें उपस्थित हैं जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। माला जी, शिवानी जी, सीता जी, सिमरन जी, जय सियाराम,
1: जय सियाराम।
0: आज के इस श्री रामायण सत्संग की शुरुआत करते हैं श्री राम जी की, श्री हनुमान जी की स्तुति और सुमिरनी के साथ। जय सियाराम,
2: जय सियाराम।

0: जय सियाराम, जय जय हनुमान।
1: जय सियाराम श्रोताओ, कल सनातन धर्म के पंचांग के अनुसार हम सबों ने गंगा दशहरा का महान पर्व मनाया। गंगा दशहरा जो वो तिथि हैं जब पतित पावनी माता गंगा विष्णु लोक को छोड़ धरती पर उतरी थी, जहां शिव जी के जटाओं से गुजरकर वो राजा भगीरथ के श्रापित पूर्वजों का उद्धार किया। इस पर्व पर हमें रघुवंश के महान राजा भगीरथ की असीम तपस्या को याद करने का अवसर प्राप्त हुआ। गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर मॉरिशस के पंडित गोसाइन जी को भी श्रद्धांजलि करने का अवसर है, जिन्होंने गंगा तालाब का रास्ता ढूंढा, जिसे कि आज लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगा तालाब का रास्ता अपना पाते हैं। श्री रामचरितमानस में गंगा माता का वर्णन अनेकों कांड में किया गया है, लेकिन जो सबसे मनमोहक प्रसंग रहा है वो है अयोध्या कांड में केवट प्रसंग, जब श्री राम जी माता सीता और भ्राता लक्ष्मण वनवास गमन की अपनी यात्रा में गंगा पार करने के लिए केवट के पास पहुंचते हैं। चलें उसी प्रसंग में सुनते हैं स्टूडियो में उपस्थित बहनों को अयोध्या कांड में 2:99। जय सियाराम,
0: जय सियाराम।

0: रसधारा।
1: जय सियाराम श्रोताओं, वनवास गमन यात्रा के अंतर्गत गुहराज और मंत्री सुमंत्र से आज्ञा लेने के पश्चात श्री राम जी माता सीता और लक्ष्मण सहित गंगा तट पर पहुंचते हैं, जहां पर वे केवट से आग्रह करते हैं कि वे उनको पार उतारे। ये प्रसंग हम सबको भक्ति भाव की परिकाष्ठा परम सीमा तक पहुंचाता है, जहां जिस चतुराई से अपने मासूम तर्क से एक तुच्छ नौ चलाने वाला श्री राम जी के पांव पखारते हैं और फिर उनको गंगा पार लगाते हैं। ये प्रसंग अपने आप में अनोखा है। एक तो गंगा माँ खुद विष्णु भगवान से उत्पन्न हुई है, इसीलिए गंगा का एक दूसरा नाम है विष्णुपदी। दूसरी बात, गंगा जी के तट पर भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, एक ऐसी स्थिति में जहां प्रभु को अपने भक्त की सहायता पर रही हैं। विष्णु भगवान जो धरती पर नर लीला करने उतरे थे, केवट के सहयोग से गंगा पार करते हैं। ये अपने आप में मॉडर्न मैनेजमेंट का एक बहुत ही भारी उदाहरण है, जहां जगत के पालन करता श्री महाविष्णु अपने भक्त के उत्थान के लिए, जिसे कहते हैं वालोगिजे, यानी कि छोटे से छोटे काम करने वालों को महान बनाते हैं। हर एक व्यक्ति का आदर करना, हर एक काम करने वाले का सम्मान करना, ये हमको राम जी सिखाते हैं, ये हमें रामचरितमानस सिखाता है। यही सनातन धर्म की सिद्धांत है,

0: जय सियाराम। सो केवट भगवान श्री राम जी से कहते हैं, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। ये आपसे कुछ मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी के की सौगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूं, तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। जय सियाराम। सोर था।
1: जय सियाराम।

0: सियाराम।
1: केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख कर हंसे। जय जय सियाराम। चौपाई।

0: जय श्री राम।
1: देवी और सजनों, रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हम सुन रहे हैं प्रोग्राम राम रस धरा संजय जी के साथ। आज स्टूडियो में चार महीने हैं और आज हम केवट प्रसंग पेश कर रहे हैं जहां पर माता गंगा उपस्थित हैं, क्योंकि गंगा दशहरा मनाई जा रही है। सो इस चौपाय में कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, हे भाई तू वही कर जिसे तेरी नाव न जाए। क्योंकि केवट को आशंका थी कि श्री राम जी के छूने से, मात्र छूने से उनकी नाव स्त्री न बन जाए, और अगर नाव स्त्री बन गई तो केवट के लिए नुकसान, संकट। एक तो रोजी कमाई जाती रहेगी और दूसरी स्त्री बन का भार। राम जी कहते हैं, जल्दी पानी

0: लाह और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे भैया, हमें पार उतार दे। जय जय सियाराम।
1: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाता है, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। श्री राम जी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे हैं हमारे राम, ऐसे विनम्र चरित्र के हैं हमारे राम। जय सिया राम,
0: जय सिया राम।

0: जय सियाराम। बात ये भी है कि जब विष्णु भगवान के आग्रह पर गंगा माँ को विष्णु लोक छोड़कर धरती पर आना पड़ा, तो गंगा माँ ने विष्णु भगवान से पूछा था कि आप तो मुझे धरती पर भेज रहे हैं सबों का पाप धोने के लिए, लेकिन मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब विष्णु भगवान गंगा माँ को आश्वासन देते हैं कि जब तक इस संसार में ऋषि मुनि साधु होंगे जो अपनी साधना से पहले, ध्यान पूजन से पहले तुम में स्नान करने आएंगे, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस प्रसंग में कुछ दूरी से देख रही गंगा माई को तपस्वी वेश में श्री राम जी, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण को देख कुछ तो प्रसन्नता हो रही थी, लेकिन जब केवट ने गगरे भर जल लाया गंगा से श्री राम जी के पैर पखारने के लिए, तब गंगा माँ ने नजदीक से आकर श्री राम जी का पद नख देखे। पद नख निरखी देश अवसरी हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोहि मति हर्षि। उन टू नेल्स को देखकर गंगा माएं बहुत हर्षाई, उन्हीं पद नखों से ही तो उनकी उत्पत्ति हुई थी। आज केवट के जरिए गंगा माएं को अपने प्रभु के चरणों को पखारने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जय जय सियाराम, जय जय गंगा माँ,
1: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: जय सियाराम। पूरे रामचरितमानस में एक केवट जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं। प्रभु जी का चरण धोने का अवसर एक तो सीता जी के पिता राजा जनक को प्राप्त हुआ था सीता स्वयंवर से पहले, और फिर दूसरा अवसर सिर्फ और सिर्फ केवट को प्राप्त हुआ। पूरे राम कथा में जो सौभाग्य राजा दशरथ को नहीं मिला वो जटायु जी को मिला, राम जी के कदमों में जीवन त्यागने का। राम जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार तो नहीं किया पर जटायु का किया। अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखार निभागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुन पुण्य पुंज करु नाई। केवट जी जैसा भाग्यशाली इस पूरे संसार में, इस पूरे जगत में और कोई नहीं। जय सियाराम।
0: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: चरणों को ढोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों का भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को चंद्र जी को गंगा के पार ले गया। सुदेवी और सजनों, आज हमने प्रसंग आपको सुनाया केवट का, जिसमें गंगा माय का वर्णन किया गया। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हमने की 3 बार गायत्री मंत्र गाकर, और ये प्रसंग गंगा दशहरा के अवसर में। हमें उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप सबों को भाया।
2: राम रसधारा।

0: सो देवी और सज्जनों, इसी के साथ ही आज का हमारा राम रस धारा ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। चलते चलते स्टूडियो में उपस्थित चार बहनों को, माला जी को, शिवानी जी को, सीता जी को, सिमरन जी को कोटि कोटि धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। देवी और सज्जनों, अगले गुरुवार की शाम को फिर से मिलते हैं श्री राम जी के दरबार में। अंत में समाप्ति मंत्र और शांति पा चार बहनों के साथ। जय सियाराम, जय जय हनुमान, जय गंगा माँ,
1: जय सियाराम।

0: गाड़ी मिला लीजिए शाम के 6 बजे हैं सभी को नमस्कार शाम 6 बजे के बुलेटिन में सबका स्वागत सबसे पहले आज की सुर्खियां ब्रिटेन ने एक बार फिर शागस समझौते के प्रति अपना समर्थन दिया है अटॉर्नी जनरल लॉर्ड हम ने कहा कि लेबर हब पार्टी इस समझौते को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में स्पष्ट किया कि मीन्स टेस्ट प्रणाली को हटा दिया गया है विपक्ष नेता जोरेश ओंगो के पीएनक्यू का जवाब दे रहे थे आज राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेंशन सुधार पर गठित विशेषज्ञ आयोग के सदस्यों की सराहना की उन्होंने कहा कि उन्होंने आयोग से शुरू किए गए काम को पूरा करने का अनुरोध किया विदेश में वेनेजुएला में आए लगातार दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई अब तक 32 लोगों की मौत बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत पेश है समाचार विस्तार से केयर स्टर्मर के बिना ब्रिटेन की सरकार ने एक बार फिर शागस समझौते के लिए अपना समर्थन दिया है ये समर्थन ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल लॉर्ड हम ने कल जस्टिस कमेटी के सामने अपने बयान के दौरान दिया उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी शागस समझौते को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं लंदन पोर्टली और वाशिंगटन इस समझौते से जुड़े विधेयक को दोबारा संसद में पेश करने की तैयारी पर मिलकर काम कर रहे हैं लॉर्ड हम ने उम्मीद कि आने वाले हफ्तों और महीनों में इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा जरा विस्तार इस रिपोर्ट में
1: ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच हुए शागस डील को रुके हुए लगभग डेढ़ वर्ष हो चुके ये समझौता उस समय अटक गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका विरोध करते हुए वीटो जैसा रुख अपनाया उस समय कई लोगों का मानना था कि इस दस्तावेज को अनिश्चित अवधि के लिए अलग रख दिया गया और इसे फिर से आगे बढ़ाने के लिए एक नई विधायी प्रक्रिया शुरू करनी होगी जिसकी कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं इस बीच हाल ही में ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल लॉर्ड हम ने न्याय संबंधी संसदीय समिति के सामने इस संधि पर संभावित समय सीमा के बारे में जिक्र किया
2: I very much hope that in the coming weeks and months we're able to sign the treaty again because It's in the national interest of this country to do so because of our national security concerns and the importance of the base in that part of the world. As you know, although the United States started off supporting under President Trump the deal, there has been a change of position. Remain determined to try and get it done.
1: इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संधि से संबंधित विधायी प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा इसी महीने की शुरुआत में बरतानी मंत्री स्टीफन डाउटी ने विदेश मामलों की संसदीय समिति को बताया था कि बरतानी सरकार पोर्टवी और वाशिंगटन के साथ मिलकर इस विधेयक को दोबारा संसद में प्रस्तुत करने पर काम कर रही है ब्रिटेन में चल रहे राजनीतिक पुनर्गठन के बीच सरकार की इन मंशाओं ने पोर्टवी को भी सतर्क कर दिया और अब निगाहें 10 डाउनिंग स्ट्रीट की अगली पहलों पर टिकी हैं इन घोषणाओं के अगले ही दिन शागस समझौते के सबसे प्रबल विरोधियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी इनमें पूर्व कंजर्वेटिव मंत्री प्रीति पटेल भी शामिल हैं उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल लॉर्ड हमर की टिप्पणियों के बावजूद कंजर्वेटिव पार्टी इस शागस समझौते का कड़ा विरोध जारी रखेगी
0: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में स्पष्ट किया कि मीन्स टेस्ट प्रणाली को हटा दिया गया है वे विपक्ष नेता जोलेश ओंगाव के पीएनक्यू का जवाब दे रहे थे इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में पेंशन पर होने वाला खर्चा 5.9 बिलियन रुपये से बढ़कर 55 बिलियन रुपया हो गया है जरा विस्तार सुनिए
3: प्रधानमंत्री के लिए ये एक निर्विवाद तथ्य है कि वर्तमान स्वरूप में बेसिक रिटायरमेंट पेंशन बीओपी प्रणाली

0: of median income, which is 28,000 rupees in 2025, was. Fourth, a person will be able to elect to receive the SEP from the age of 60 to 70. The pension amount will increase by 9% for each year that the benefit is deferred beyond the age of 65. The recommendation seeks to bring fairness by providing individuals with greater choice, they have a choice, regarding the timing of the benefit while improving the long-term sustainability of the pension system. From 1st of July 2027, there will be revamped mandatory national contributory retirement scheme to replace the defunct National Pensions Fund.
1: विशेषज्ञों की समिति के सदस्यों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के संबंध में जोले जोंगा के एक सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ऐसे मॉरिशस वासियों को चुना है जिनके पास विशेषज्ञता है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने ये भी कहा कि उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों के बाद सदस्यों ने इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने उनसे ऐसा न करने के लिए कहा।
2: बजट 2026-2027 में जरूरतमंद परिवारों के लिए एक और कदम उठाया गया है। सोशल रजिस्टर ऑफ मॉरिशस में 2300 से ज़्यादा नए परिवारों को शामिल किया जाएगा ताकि वे नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की सामाजिक सहायता का लाभ उठा सके। इसके साथ ही इस योजना का लाभ पाने के लिए तय की गई आय सीमा को भी 1 जुलाई 2026 से बढ़ाया जाएगा। इसका मकसद ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाना है। मॉरिशस को अफ्रीका में एक प्रमुख फिनटेक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक नया कदम। इसी उद्देश्य से नेशनल फिनटेक स्ट्रेटेजी 2026-2030 की औपचारिक लॉन्चिंग की गई। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका के तकनीकी सहयोग से इसे तैयार किया गया है। लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर, वेनेजुएला में आए लगातार दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई। अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: वेनेजुएला में आए लगातार दो शक्तिशाली भूकंपों से भारी तबाही हुई है। अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सबसे अधिक नुकसान देश के उत्तरी हिस्से में हुआ है जहां कई इमारतें ढह गई हैं। राजधानी में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। कई स्थानों से लोगों के में दबे होने और मदद के लिए पुकारने की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार दोनों भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। दोनों झटके 1 मिनट से भी कम समय के अंतराल पर हुए। दूसरा भूकंप वर्ष 1900 के बाद देश में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। दोनों भूकंप जमीन की सतह के काफी करीब आए जिससे झटके बेहद तेज महसूस किए गए और व्यापक नुकसान हुआ। अमेरिकी वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपने प्रारंभिक आंकलन में आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या काफी बढ़ सकती है। एजेंसी ने इस भूकंप के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जो सबसे गंभीर भूकंपों के लिए जारी किया जाता है। इस बीच कई देशों ने वेनेजुएला को खोज एवं बचाव दल, चिकित्सा सहायता और राहत सामग्री भेजने की घोषणा भी की है।
2: और वर्ल्ड कप की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने रच दिया इतिहास। दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंतिम 16 में शानदार अंदाज में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये यादगार जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप ए में दूसरा स्थान हासिल किया है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप चरण की आज आखिरी रात है। अंतिम 16 में जगह बनाने की दौड़ अब भी रोमांचक मोड़ पर है। हर टीम के लिए हर अंक बेहद अहम है। कुछ टीमें अगले दौर में पहुंचने की कोशिश करेंगे तो कुछ का सफर आज रात समाप्त होगा। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
1: पूर्व से पाए जा रहे बादल धीरे धीरे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं की लहर बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज रात बादल घिरे रहेंगे और देश भर में बारिश होगी। कभी कभी जोरदार से सामान्य बारिश होगी, खासकर पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्रांतों पर, और बादल भी गरज सकते

सकते हैं। कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे जिसके कारण दृश्यता कम होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, तटवर्ती इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह बरसाती मौसम रहेगा, ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। दोपहर बाद को धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। विपरीत हवाओं के कारण जनता से रास्ते पर सावधानी बरतने की मांग की जाती है और ऊंचाइयों पर काम करने से परहेज करने की मांग की जाती है। प्रवाल रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पूर्वी और दक्षिणी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। फिर भी कल दिन के दौरान धीरे धीरे दक्षिणी लगूनों की स्थिति में सुधार आएगा। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और 5:40 बजे सूरज ढल जाएगा।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर शिव का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

शोक समाचार सुनिए। लाहू कुवां क्यूपिप में, लाहू कुवां क्यूपिप में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्डर के श्रीपुन स्वामी रासेन जो कुमारन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके मकान लाहू कुवां क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9 AM। जुवांस डेपिने में 26 साल की 26 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती उर्वशी राम सिंह पैदाशी नाम गुचन और जो सेशना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद उठाई गई। रामसुंदर लेन सुल्फेरिनो नंबर तीन वाकवा में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ईश्वरी जालिम पैदाशी नाम आगाती और जो गीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति राजेश जालिम के मकान रामसुंदर लेन सुल्फेरिनो नंबर 3 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालांस सुल्फेरिनो नंबर 5 वाकवा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। विक्टोरिया लेन होशनुआ में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री संजीव ओरिसिंकला अपादू जो संजीव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी माँ राधिका ओरिसिंकला अपादू के मकान विक्टोरिया लेन होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री दीपनाथ हरलोल जो शैलेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे मोहा फ्यूनरल पिचित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। चातोगुन लेन लिस्कालिये में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती

Santabai Kushnia Ganesh, Shrimati Santabai Kushnia Ganesh, पैदाशी नाम कुशनिया, और जो सांता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे मोहन गणेश के मकान चातोगुन लेन लिस्काली

0: लागेमा सेंपिया में तमिल टेंपल रोड लागेमा सेंपिया में 74 साल की 74 years old की श्रीमती सरादंबल मुतिया, श्रीमती सरादंबल मुतिया पैदाशी नाम मुतियाँ और जो देवी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल सुबह 9 बजे उनके बेटे सदाशिवन मुतिया सिवन के मकान तमिल टेंपल रोड लागेमा सेंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सेंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 9 AM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में, ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 76 साल की 76 years old के श्री सुलेश गोकुलक, श्री सुलेश गोकुलक जो SSR अस्पताल में पूर्व अटेंडेंट थे और जो सुलेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC
2: Radio. Center, 95.5, North, South, 95.6, 95.6, East, West, 98.2.
3: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त शाम के 6:27 हो गए हैं।
6: गिनिशा का प्यार भरा प्रणाम, आप सभी लोगों का स्वागत है इन राम राज धारा इस खास कार्यक्रम में। हम लेकर आए हैं के तत्वावधान में मौसलमो सैतौंद्रे आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 39 शुक्रवार 26 जून को शाम 4:30 बजे यज और प्रवचन का आयोजन कर रहा है। सत्यार्थ प्रकाश प्रचार मास के संदर्भ में आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में टोमासे क्रेवकर आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 27 शुक्रवार 26 जून को शाम 6 बजे से रात्रि के 8 बजे तक यज और प्रवचन का आयोजन कर रहा है।

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं नई सोच कार्यक्रम। दोस्तों, एक नया विचार, एक नई सोच आप लोगों के सामने हम यहां पर प्रेजेंट करने वाले हैं, जो शायद आप उसको भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम किसी से एकदम जोर से बात कर लेते हैं, झल्ला करके कुछ एवे कुछ पक देते हैं, तब जाकर के सामने वाले को बहुत बहुत बहुत दर्द होता है, उनकी आंखों से आंसू भी टपकने लगते हैं और उस रिश्ते में एक गांठ सी आ जाती है। तो ऐसी टाइम पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन, एक कैंची लेकर के उस गांठ को काट करके आप वहां से रफा दफा हो जाइए। जबकि आपका दूसरा ऑप्शन ये है कि बहुत ही इत्मीनान हो करके, बहुत ही प्यार के साथ, धैर्य के साथ उस गांठ को सहेजते हुए उसको खोलने की कोशिश करें। जब आप पूरी सब्र के साथ उस गांठ को खोलने की कोशिश करेंगे ना, तो एक प्यार अलग तरीके से पैदा होगा और उस रिश्ते में एक नयापन आएगा, एक नई गति आएगी। तो दोस्तों, आपके पास दो ऑप्शन है, आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं इस रिश्ते को फिर से एक मौका देने के लिए, इसके बारे में सोचिए।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए यह धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

0: Continuous music. RM3.
1: जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में अगर आप एक नए चैप्टर और उस नए चैप्टर में एक नई किताब की कवर के बारे में सोचेंगे ना, तो अपने आप में आप बहुत नई चीजें करते जाएंगे। इसके बारे में सोचिए।

पता है जिंदगी में कभी कभी खामोश होना भी बहुत जरूरी होता है। सभी बात का उलट कर जवाब देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब आप मुंह तोड़ जवाब देना शुरू करेंगे ना, तो वो जो रिश्ता है ना, उसमें एक अलग तरह का एक तरह की एक मोड़ आ जाते हैं। तो खामोश रहिए ना थोड़ा सा। अभी खामोश रात की बात कर रहे हैं जी।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं।

जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे हम भी यहाँ पर आप लोगों के मनोरंजन के लिए आ ही गए हैं ताकि आपकी जिंदगी और ज्यादा खूबसूरत हो जाए।

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं दिलों की आवाज कार्यक्रम में। इस वक्त दोस्तों रात के 7:06 हो गए हैं और इसी टाइम पर आप लोगों के होने का एहसास यहां पर शुरू होने लग गया है ऑन 5250 6200। जहाँ दोस्तों आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं। एग्जैक्टली कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे 10 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मिल गए हैं, इतने सारे डेडिकेशंस और इतने सारे ब्यूटिफुल गाने की फरमाइश आप लोगों ने की है, जहाँ पर मैं खुद कह रहा हूँ माई गुडनेस, मेरे जो प्लेलिस्ट है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। और बाहर बारिश हो रही है ना? जी हाँ, मुझे बताएं बारिश हो रही है और बारिश की बूंदों के साथ आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे एंजॉय द गुड म्यूजिक ऑफ रेडियो मनोरंजन, गुनगुनाइए जी।

गुनगुनाते ही हमें यहाँ पर दोस्ती मिल गई है और वो दोस्ती आप लोग हैं, वो दोस्त आप लोग हैं। और यहाँ पर शायरी बनने के शायरी करने का इरादा नहीं है, बस आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक जो गाने हैं आप लोगों की खिदमत पेश करने का इरादा है जी। चलिए, बाहर बारिश हो रही है, ठंड का मौसम है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, जी हाँ बिल्कुल, वी डू हैव कौन। अच्छा, यहाँ पर प्यारी बहन शोभा के नाम ये गीत की मांग की जा रही है। वी ऑल्सो हैव अनुराधा, लक्ष्मी और सभी रेडियो मनोरंजन की टीम की तरफ से, और दिस इज दैट्स फ्रॉम अनीता जो फिक ऑफ लक के रहने वाली है।

दोस्तों इस वक्त रात के 7:18 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रात बाकी है और बात भी बाकी है और इसी टाइम पर एक हल्की सी बारिश हो रही है और अब आप काम से निकलकर घर की ओर जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए हैं और आपकी जो स्वी ग्लास हैं वो ठक ठक ठक ठक करते जा रहे हैं और आप हमारे गीत को एंजॉय कर रहे हैं। एक ऐसे टाइम था जहां पर आप उस सॉन्ग्स से जुड़ी जो यादें हैं उमड़ती घुमड़ती सामने आ रही हैं, लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई है, हालांकि पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं लेकिन आप हौली हौली कत्ते कत्ते जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच टू ट्यून टू रेडियो मनोरंजन अभी के साथ। वेल दोस्तों, हम आपका साथ देंगे यहाँ पर रात के 9 बजे तक और ये जो अगला गीत है उन तमाम दोस्तों के हम के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे जो 90s ईरा के बच्चे थे। और डू यू नो दैट वीडियो कैसेट, जब आप लोग वीडियो क्लब में जाते थे और वो वीडियो कैसेट आप मतलब बोरो करके लाते थे घर पर और वो मूवी देखते थे, अक्षय खन्ना के या फिर अक्षय कुमार के, माधुरी दीक्षित की मूवी जब आप देख लेते थे तब आप दूसरों को भी देते थे देखने के लिए। पता है मुझे 24 घंटे मिले हैं ये मूवी देखने के लिए, मैंने 2 बार देख लिए। कभी कभी हम लोग 2-3 बार एक मूवी देखते थे उस जमाने में, क्योंकि दैट वाज द मेन मतलब एंटरटेनमेंट फॉर अस, मनोरंजन का ये एक अहम साधन था उस जमाने में। हमारे पास ना मोबाइल था, मोबाइल तो दूर की बात है, हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। साथ ही साथ वी हैड यू नो मतलब हमारे पास ना मोबाइल था, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना इंस्टा, ना टिकटॉक, कुछ नहीं था। हमारे पास बस बॉलीवुड के मूवीज़ के वीडियो कैसेट्स थे जो हम लोग रेंट पर लेकर के मूवी देखते थे। दिल के तार को छेड़ने के लिए हम यहां पर आ ही गए हैं, ये गाना खासकर आपके नाम। By the way, 402 80 70 पर 402 8070

इसीलिए हम आ ही जाते हैं एवरी थर्सडे को। और पता है जब हम आते हैं ना, हम अपने प्लेलिस्ट भी बनाना शुरू कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट थर्सडे। एक छटपटाहट होती है आप लोगों से मिलने के लिए, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी अपनी प्लानिंग, अपने प्रिपरेशन कर ही लेते हैं। इस वक्त रात के 7:26 हो गए हैं। ललिता कुशल, जो एक्चुअली त्रियोली से रहने वाली हैं, उन्होंने कहा कि सुदेवी ज्ञानी छोटी प्रभावती दादी है जो नुवेल फ्रांस की है, कैट्रोबोन की हरीश भाई और मालेगा के भाई आत्माराम, साथ ही साथ मौसी सुखलाल भी है। तो चलिए अगला गीत स्पेशली आप लोगों के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे। यू कैन ऑल्सो सेंड अस योर मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250620052506200। वेटिंग फॉर यू दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, ये गाना स्पेशली हम विक्रांत के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, जिस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है फ्रॉम एबेन्ना। उन्होंने कहा कि उनके नाइट शिफ्ट के जो टाइम है इसकी शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा अपने काम की शुरुआत करने से पहले वो डिनर तो ले चुके हैं, लेकिन एक गरम गरम कॉफ़ी अगर होगा तो बहुत ही बेहतर होगा, खासकर द डोज ऑफ म्यूजिक जो इस वक्त रेडियो मनोरंजन की लहरों पर वो अभी सुन रहा है। ये गाना खासकर उनके नाम और उनके एक्स के नाम। उन्होंने ऐसा कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्यों एक्चुअली जब सचमुच कोई छोड़ करके चले जाते हैं ना तो जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो ये गाना खासकर विक्रांत के नाम। Here we go। और डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बेकाबू मूवी बहुत पसंद है और उनको ये गाना भी बहुत पसंद है। जब वो ये मूवी देखने गए थे सिनेमा घरों में तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो डेफिनेटली ये गाना आप लोगों के नाम भी उदित नारायण और का यज्ञ की आवाज़ों में।

इस वक्त हमारे साथ रीता किसुंदयाल हैं, उनके पति अजय और दो बच्चों के नाम अखिल और व्योम, और उनके लवली प्यारी ही बहना पूनम, और साथ ही साथ हैं जीज मनीष, और साथ ही साथ है भांजी जिनका नाम है परितुष्टि।

चलिए ये गाना खासकर हम चेतन सिंह के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, जो जिम से निकलकर घर की ओर जा रहा है। और उन्होंने कहा ये गाना उन सभी जिम पार्टनर्स के नाम जो अपने शरीर को लगर लगर के वो अपना वर्कआउट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वे जब एक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं तब लगता है कि हाँ, हमारा जो शरीर है ऐसे ही यू नो डिफाइन ही हुआ है, इसके पीछे बहुत ही मेहनत है।

जाओ दोस्तों, वेटिंग फॉर यू ऑन 5250 6200. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आप लोगों के मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच इसके लिए.

चलिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास फ्रॉम रोशतिया। उनके यहाँ पर हल्की सी बारिश हो रही है। उन्होंने जो वीडियो कैसेट से जुड़े जो रील हैं, खासकर एमबीसी से जुड़ी जो यादें हैं, हमारे साथ शेयर किया है। क्या बात है। सो विकास, ये गाना खासकर आपके नाम।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं।

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं दिलों की आवाज कार्यक्रम के सेकंड आवर। वेलकम एवरीवन। इस वक्त रात के 8:07 हो गए हैं। वेटिंग फॉर यू ऑन 5250620 फॉर यू डेडिकेशन। एग्जैक्टली कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे पता है बारिश हो रही है, लेकिन बारिश की बूंदों के साथ आप भी हमारे साथ हाय हाय मर जावा।

प्यार का जो कारवा है उसको हम यहाँ पर बरकरार रखते जा रहे हैं जी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है मिसिस उगारा, कहने का मतलब है रोनिश उगारा की मम्मा। वो इस वक्त किचन में काफ़ी बिजी हैं और हमारे शो को भी एंजॉय कर रही हैं। ये गाना खासकर मेरे जिगरी दोस्त रोनिश के नाम और उनकी प्यारी लवली वाइफ के नाम।

जी दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं एंड ऑफ कोर्स वी डू हैव रेहाना। उन्होंने कहा कि नाइस सॉन्ग सिलेक्शन। अभी मैंने उनसे कहा नहीं यार, ये मेरा सिलेक्शन थोड़ी है, ये आप लोगों का सिलेक्शन है। जनता जनार्दन की जय हो जी। जी हाँ दोस्तों, वी डू हैव जालीला और साथ ही साथ रेहाना इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है, मैं उसको यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे सुदेवी के नाम, जिनकी बेटी युतिशा का जन्मदिन है, जो ब्रजविया जय के रहने वाली है। सो बहुत बहुत सारे शुभकामनाओं का गुलदस्ता इस वक्त सीनत और रामकिशन फैमिली दे रही हैं। तो खासकर ये गाना आप लोगों के नाम।

एंड राइट नाउ वी डू हैव जी हाँ बिल्कुल इंद्रा सेन फ्रॉम सुयाका और वो ये गाना खासकर डेडिकेट करना चाहती हैं उनके लवली सिस्टर के नाम जो यूके में है इस वक्त और हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv. सो इंद्रा सेन ये गाना खासकर आपके नाम और आपके लवली सिस्टर के नाम.

दोस्तों इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ नाउ. थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमारा साथ दिया. डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, लेकिन जाते जाते यहाँ पर हम डेडिकेट करना चाहेंगे जो ये गाना. यस, वी डू हैव कल्याणी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. कल्याणी टॉल फैमिली, पापा हैं संदेश, दिवेश, लियोशे से जितने सारे टॉल फैमिली हैं, लेतीशा भी हैं. ये गाना आप लोगों के नाम. दोस्तों हम लोग मिलेंगे डेफिनेटली नेक्स्ट वीक. तब तक अभी को दीजिए इजाज़त. नमस्कार, राधा बाबा.

0: अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: MBC TV programs की झलकियाँ।
5: ये तमाशा नहीं, फैसला है भैया।
6: इस घर में फैसला करने का अधिकार सिर्फ राणा महेंद्र प्रताप को है।
5: जिस घर में मैं अपनी मर्जी से जी न सकूं, ऐसे घर को ठोकर मारकर जा रही हूँ मैं।
7: कभी ना इम्तिहान लेना, यूं प्यार में सच्चों का, मोहब्बत ने झुकाया है सर अच्छे अच्छों का।
8: नजरें मिली, दिल धड़का मेरी धड़।
4: शनिवार 27 जून को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म राजा 1991 की ये मूवी माधुरी दीक्षित और संजय कपूर पर फिल्माई गई रोमांटिक मूवी राजा। MBC TV रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
9: मेरी लाइफ बिल्कुल इजी और स्ट्रेस फ्री है क्योंकि कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। जो भी करना है करता हूँ।
10: तो मुझे गाड़ी से निकाल रहे हो?
9: You gonna go?
10: Why?
9: Because I've got

रविवार 28 जून को NBC3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म आई मी और मैं 2013 की ये मूवी प्राची देसाई और जॉन इब्राहिम पर फिल्माई गई आई मी और मैं।

0: मस्ती के धमाल भोजपुरी तड़का आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात 25 जून 2026 के बिफे के रात था और 9:05 होलबा हम किरण आप सबको के आज के भोजपुरी तड़का में स्वागत करत है। हमार सप्रेम नमस्ते स्वीकार कर। आज ठंडा थोड़ा जस्ती बा और हर जगह थोड़ा पानी जस्ती बरसता तो ऐसन में आपके चाहिए अपन ख्याल रखे के और अगर ये बखत आप घर से बाहर हवा तो आपके चाहिए और भी ज़्यादा सावधानी बरते के और आपके ये 2 घंटा के सफ़र बहुत अच्छा से कटी ये बात के ख्याल आज हम रखे होला है। तो चला आपके अपन मन पसंद गीत सुना नोयन के आवाज़ में बाजा बोल आप सब कोई के नाम और फिर आपके फरमाइश भी चलते रही।

0: नाम किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो
0: MBC TV रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
2: दारू की दुकान पड़ती है कभी घर के आसपास?
3: घर के थोड़ा आगे चल के
2: बाईं तरफ,
3: दाईं तरफ है।
2: आते वक्त तो बाईं तरफ पड़ती होगी ना।
4: हर कुत्ते का दिन आता है, कुकू का भी आएगा और सब बदल जाएगा।
5: बातें बची बहुत बताने के लिए, जिंदगी तेरे संग बिताने के लिए।
0: रविवार 28 जून को MBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कुकु माथुर की जंड हो गई। 2014 की ये मूवी सिद्धार्थ गुप्ता और सिमरन कौर पर फिल्माई गई कुकु माथुर की जंड हो गई।

रात के 9:16 होलबा और आप लोग भारी संख्या में सुनत हवा जा फोन करत हवा जा आपके फरमाइश खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात के हम पूरा ख्याल रखब कि जितना गीत के मांग करत हवा जा वो सब गीत चली। अगला गीत पियर पियर ऊँठी के हरियर नगिनवा दिव्या रघु के आवाज़ में ये गीत सुने चाहत हवन शीला। और शीला जी ये गीत अपन पति के साथ सुनत हवन सुरेन और पूरा परिवार जे मॉरिशस में हवन जा मॉरिशस के बाहर हवन जा सब बेटी दामाद

नाती पोता सबके नाम आप करत हवा ई अगला गीत और ई अगला गीत कोंगोमा के विमाला के नाम उनकर बहिन सुनीता के ओर से जे घोंगुप से हमनी के सुनत हवन और अक्सर सुनते रहेलन।

संगे। रात के 9:22 होलबा और हमने के साथ रही हमेशा की तरह रात के 11 तक। ये 2 के सफ़र आपके ही पसंद के गीत पर आधारित रही और आपके पसंद के गीत की फरमाइश आई में देरी नहीं कर लेबा। आप सब कोई के फरमाइशी गाना के लिस्ट हम फिर से बना ले जाते हैं। अगला जन गीत चली सब दामाद लोग के नाम और दामाद लोग के ओर से सब सास लोग के नाम। हंसले ये गीत खास तौर पर अपन सास के नाम करत हवन। कुणाल बाबूलाल के आवाज़ में दामाद बाबू।

0: कुणाल बाबूलाल के आवाज के बाद इजन अगला गीत चली ज्ञान महिपतला के आवाज में एकर मांग कर ले हवन बेलिया से आत्माराम जी और आत्माराम जी अपन चार गो बहिन के नाम ई गीत करत हवन सुदेवी ललिता प्रभावती और छोटी के नाम और ई गीत सुने के ढेर कोई खुशी रहेला जा और आप में शामिल हवा बशहरी के धनी जी तो आप सब कोई के नाम ये अगला गीत खास तौर पर जज्ञान महिपतलाल के आवाज़ के दीवाना हवा जा
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

स्वर्गीय ज्ञान महिपतलाल के आवाज में ये सुंदर गीत अभी सुनला और अगला जन गीत चली वो एगो फीमेल वॉइस में रही और ये भी आवाज बहुत सुंदर आवाज बा संभवती दुमन के बात करत है जा इनकर सुंदर गीत नाको के फुलिया गिरा तत गिरे दे ये गीत सुने चाहता वन ललिता जी और हमेशा की तरह ललिता जी अपन सब भाई लोग के नाम ये गीत करा था वन जिनकर में आत्माराम और हरीश भैया हवन फिर सब बहन लोग के नाम बहन लोग में बा उनकर सबसे पहले तो उनकर सुदेवी दीदी फिर ज्ञानी हवन फिर छोटी प्रभावती और माला राम जावन भी हवन और सुखलाल मौसी तो ललिता जी के ओर से आप सब कोई के नाम ये अगला गीत और जितना कोई भी संभावती दुमन के आवाज़ खुशी रहे लजा और उनकर गाना भी पसंद करे लजा तो आप सब कोई के नाम ये अगला गीत

आज 25 जून के जितना कोई के भी जन्मदिन बा आप सब कोई के भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के ओर से जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। और आज ही नहीं बल्कि काल जे लोग के जन्मदिन रहल काल जे लोग के जन्मदिन रही आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई।

आज के रात देखा था कि ठंडा कुछ ज्यादा ही महसूस हुआ था और सर्दी के मौसम बा ये सर्दी के असर अब नजर आए लगल बा दो तीन दिन से और थोड़ा बहुत पानी भी बरसता कहूँ थोड़ा जस्ती बरसता लेकिन ऐसन में कोई के मन बा सुने के पानी नहीं बा और ये गीत के फरमाइश आलबा फोंजुसाक से उमा जी ये गीत रिविया जू रोंपा के आहना और वाकवा के आरोही के नाम मांगत हवन तो चला एक साथ सुनी जा पानी नहीं बा लेकिन असल में पानी बरसे के शुरू हो गल बा।

0: और जब पानी की बात चलते ही बात मच्छी की भी बात करी जा। मच्छी मरुआ जय हरलाल के आवाज़ में गीत सुने चाहा था वन भाई अब्बू, और हमेशा की तरह भाई अब्बू ये गीत वाकवा से आप फरमाइश करा था वह अबू अफेज असलम अयाज जयर जहीरा रईस कालाचोटी के नाम, और साथ में आपके दोस्त आपी और उनकर बीवी के नाम, और पूरा रेडियो टीम के नाम, और जितना कोई इबकत काम करा था वजह आप सब कोई के नाम ये गीत भाई अबू का रथवन, साथ में वाकवा के सुदेवी जी के ओर से उनकर सब बहिन सब परिवार के नाम, थियोले के कुशल परिवार, आत्माराम भैया, सुनीता दीदी, शोभा, देवीना, मालेंगा के रामरतन परिवार, राम गुलाम कोतवारू परिवार, और जितना कोई भी ये बखत ये प्रोग्राम सुना था वजह आप सब कोई के नाम।
1: RM3 Radio.

0: रहा किरण संगे।
1: RM3 रेडियो।
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
0: भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 10 बजकर बा और अभी से और एक घंटा तक हमने के सफर साथ में चली। अगला जन गीत चली एक बार फिर कुणाल बाबूलाल की आवाज़ में, एक बहुत ही मशहूर गीत नया सिरे देखा थे जा। एक बार फिर हमने के देश में ठंडा के मौसम चलाल बा, ढेर कोई के ये मौसम बहुत पसंद है, तो एक जो बुरा असर बा वो भी पड़े के थोड़ा शुरू हो गल बा। आपके चाहे अपन स्वास्थ्य के थोड़ा जस्ती ख्याल रखे के, सर्दी खांसी जुकाम तब वो सब लग ले जाता, और ऐसन में घर के एगो परिवार जे बीमार पड़ल तब पूरा परिवार सकी बीमार हो जाए। ये खातिर आपके हर मुमकिन कोशिश चाहिए करे के ताकि कोई बीमार नहीं पड़ी, और जे पर भी जाए तो आपके चाहिए ये बात के ख्याल रखे के कि आप इतना अपन खुद के ख्याल रखबा कि दूसरा बीमार नहीं पड़ी, और ऐसन में चाहिए ढेर ठंडा पानी में नहीं निकले के, रात के बखत ज़रूरी नहीं रही तो बाहर नहीं जा, और भोजपुरी तड़का सुना अपन घर में, लेकिन ये बखत ढेर कोई गाड़ी चलाते चलाते भी बीच सीमा में सुना था वन जा। आप सब कोई के नाम ये सुंदर गीत मशहूर गीत नया सिरे।

आवियों की बात छोड़ा कहे कि दूसर देश में तो लू चलता मॉरिशस में ही रही जा और यहाँ पर रिमझिम पानी बरसता ठंडा ठंडा हवा चलता और ऐसन में रात के नींद भी अच्छा लगता तो विनोद सिद्धत की आवाज़ में ऐसन ही एक गीत पनिया बरसल बा ये गीत सुने चाहता वन तेहूज से शांति जी और शांति जी अपन मराठी परिवार के नाम जो लोग दागुचिया से हवन जा और अपन दागुचिया से अपन भगिना ओम के नाम ई गीत करत हवन और साथ में आप बोलत हवा कि ई गीत आप ख़ास तौर पर हमार नाम करत हवा बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी चला पनिया बरसलबा एक साथ सुनी जा

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

अगला गीत विष्णु हरि की आवाज में ये गीत सुने चाहता वन वाकवा से विश्वानी दोमन और विश्वानी दोमन ये गीत अपन दुगु बहिन शारदा इंदिरा और फिर मीला प्रतिभा और गीता गजाधर के नाम करत हवन।

रात के 10:25 हो गल बा और लगभग आधा घंटा में भोजपुरी तर का प्रोग्राम समाप्त हो जाए, लेकिन पूरा आधा घंटा बा हमने के सामने। और अगला जन गीत चली ओ बलमा, श्वेता बाबूला के और किशोर किमिया के आवाज़ में। ये गीत सुने के चाह रखा वन पितों से अमृता गणेश जी। और अमृता जी गीत स्नेहा, सोनिया परी और पूरा गणेश परिवार के नाम करा था वन, साथ में विशान और मीनाक्षी के नाम खास तौर पर। तो आपके साथ मोतालों के गीता जी भी अभी हमने के सुना था वन। गीता जी ई जन अगला गीत चली सुंदर गीत ओ बलमा आपके भी नाम। और फिर एकर बाद गीता गजाधर के आवाज़ में एगो दूसर गीत चली माँ बाप के मोल पर। और जब वो गीत के बारी आई तो ओकर फरमाइश पर जस्ती बोलब जा।

0: भोजपुरी की धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: भोजपुरी तड़का के अंत तक हमने लगभग चला है जा और आधा घंटा से कमती समय बा। और ये अगला जो गीत चली गीता गजाधर की आवाज में, ये गीत सुने चाहत हवन फ्लिक ऑफ लक से अनीता जी। अनीता जी ये गीत अपन पति राज और बेटा अंतिश, अंकुश, बहु मनीषा, आशिमा, उनकर पोती हिमेशा, आध्या, पोता अंश और रेजो मॉरिशस के और रेजो मनोरंजन के और एमबीसी के पूरा टीम के नाम करत हवन। तो चला गीता गजाधर के आवाज़ में माँ बाप की मोल।

0: जेकरा जेकरा नैहर जाए के बा उनकर खातिर लुत्तो मंगा द और रात के देरी हो गल बा 11 बजे में 15 मिनट कमती बा हमनी के प्रोग्राम 11 बजे तक चली और अभी तक आप साथ देते हवा आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जितना फरमाइश रहल उ सब पूरा करे के हमार आज पूरा कोशिश रहल। आशा करत है जा आज के प्रोग्राम आपके पसीना हमेशा की तरह। कल फजर के हमने फिर मिलब जा और अपन ख्याल रखिया सर्दी के मौसम बा और साथ में अपन सुरक्षा की भी ख्याल रखिया। घर द्वार अच्छा से बंद करके रखिया। कुंवारी सब खातिर नहीं खोलिया जेके नहीं जनबा तो ओकर से बात ही नहीं करा। घर में आने के तक कोनो सवाल ही नहीं पैदा हुएला और शुरू जहाँ अपन फाटक ही बंद कर दे सब कोई खातिर खाली परिवार अपन परिवार के घर में आनिया और कोई के नहीं। आपके सुरक्षा सबसे बड़ा बात बा। देखत है जा कि आज का समय जो चलता काफ़ी ख़राब समय चलता लुत्तो में भी जेबा तो अपन सुरक्षा के ख्याल रखते हुए अच्छा से लुत्तो के बंद करके चलिया। इधर उधर कोनो समस्या रही तो उस समस्या में उलझिया नहीं और ये सब बात के जो ख्याल रखबा तो आपके सुरक्षा के भी ख्याल रही। और अभी जे आप नींद में जाता हुआ तो यही आशा बा कि आज के नींद आपके बहुत अच्छा रही। अच्छा अच्छा विचार करके अच्छा अच्छा संकल्प करके आप सुते जा ताकि उस सब संकल्प सच्चाई में बदली सिद्ध होई और काल फजर के एगो नवा जिंदगी की शुरुआत होई। आप सब कोई के नमस्ते शुभ रात्रि।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

0: संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: वेल दोस्तों, जो बीत गया वो कल था, जो याद रह गई वो सुनहरे पल हैं। दोस्तों आइए मिलकर सुनते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे गीत जो आज भी दिल को धड़कनों में बसा देते हैं। बिल्कुल जी, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार और गिनेशा का प्रणाम। सभी लोगों का स्वागत है रेडियो मॉरिशस पर।

यादों के पन्नों को आज फिर से खोलते हैं, क्या ख्याल है आपका? कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं और कुछ लम्हे फिर से जी लेते हैं, क्या ख्याल है आपका मेरी जाना? एक्चुअली देखा जाए हर एक गाने के साथ आंखें होंठों पर मुस्कुराहट हम लेकर ही आ जाते हैं और हम तो चाहते हैं कि बस आराम से आप बैठ जाइए और हमारा साथ दीजिए इस खूबसूरत से सफर में। ये है आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

सुरों का सफर जब पुरानी यादों से मिलता है ना दोस्त, अब दिल खुद ब खुद मुस्कुराने सा लग जाता है और इसी मुस्कुराहट को लेकर हम आ जाते हैं हर एक गाने के साथ। कुछ गाने जो आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, जो आपकी यादों को फिर से ताज़ा कर लेते हैं। तो बस तैयार हो जाइए अपनी यादों में फिर से खो जाने के लिए।

दिल से निकले गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, बिल्कुल दिल से निकले गीत कभी पुराने नहीं होते हैं और मोहब्बत से भरे लफ्ज कभी बेगाने नहीं होते हैं। आइए दोस्तों आज इस महफिल को और भी सजाते हैं इन खूबसूरत गानों के साथ। तो चलिए जी ये अगला गाना आपके नाम।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप गिनिशा को इजाजत दीजिए. इट्स टाइम फॉर मी टू से गुडबाय. लेकिन हम फिर आएंगे ऑफ कोर्स खूबसूरत पुराने गीतों के साथ आपका दिल बहलाने के लिए इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस.

0: और फिर क्या होगा
1: पार्टियां दावतें
2: Yes!

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: आपका जूता देखा, बहुत हसीन है, इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं, ये पढ़ा और सुना था, पर ये जूता, लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।